0: From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
1: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit FriscoPrecisionSports.com or call 469-333-1099.
2: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
3: आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
5: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
4: Visit Fan Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
6: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
7: स्वागत है आपका 104.9 FM फनीशा रेडियो पर. होप यू आर हैविंग अ लवली लवली इवनिंग टुडे. स्पेशल इवनिंग क्योंकि आज आप स्पेशल हैं. कल किसने देखा है और कल को भूल जाना ही अच्छा है. आज पे हम रहें तो खास है. लेकिन एक बात किसी ने कही जो दिल को लग गई और दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचे तो लगती है ठाएं. रिश्तों में समझदारी ज़रूरी है. रिश्तों में समझदारी ज़रूरी है. बुरा दोनों को लगता है. ये दोनों को समझना ज़रूरी है. एक हम अपना रोना लेके बैठ जाते हैं कि उसने मुझे नहीं समझा, पर उसे भी तो समझ लो. वहीं पर हम अटक जाते हैं बस. अदरवाइज लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल व्हेन यू हैव योर ओन पीपल. यू हैव पीपल टू लव यू. यू हैव रिश्तेदार. यू हैव फ्रेंड्स एंड यू हैव फैमिली. चलिए पार्टी शुरू करते हैं अभी इसी वक्त.

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: यार भैंस क्यों चराए? डांस नहीं करना तो हम मूवी देख सकते हैं, हम डिनर पे जा सकते हैं, हम कहीं और निकल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यार मुझे पार्टी नहीं करना, लेकिन जाना है तनिष्क जी। डायमंड्स आर जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेजिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। आप इंजॉय कर सकते हैं 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। तो फिर इससे अच्छी बात क्या, यही तो पार्टी है। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो यही कोई कुछ भी कह ले, आप पार्टी ना करें तो भैंस ना चढ़ाए, कुछ और करना है तो बिल्कुल व्हाई नॉट, अ मूड लाइक बम डिगी डिगी।

सोनू के टीटू की स्वीटी लिया गया, ये बहुत ही क्यूट सा गाना। एंड उस समय बस स्टार्टअप ही हो रहा था कार्तिक आर्यन का, सो देयर यू गो, ही हैज कम अ लॉन्ग वे। पर पता है ब्रांड न्यू फिल्म आने वाली है संजय लीला बंसाली की, आपको पता तो होगा ही, सुने तो होगी, उड़ती उड़ती चिड़िया खबर तो दी ही होगी, फनी या नहीं दे दिया होगा, लव एंड वॉर। ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल, संजय लीला बंसाली की फिल्म। जब संजय लीला बंसाली छाए हुए हो ना उस पोस्टर पे, तब या नाम के साथ जुड़े हुए हो, यू नो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर फिल्म। मज़ा तो फुल फ्लेजर्ड आएगा, टोटल पैसा वसूल। संजय लीला बंसाली की मच अवेटेड लव एंड वॉर की एक खबर आई है कि ये जो कैरेक्टर्स के पोस्टर हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, दैट इज़ गोइंग टू रिलीज़ ऑन August 15th, yes, इंडिपेंडेंस डे को रिलीज़ कर रहे हैं। और ये तीन कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, एब्सोल्युटली अलग अलग, और सुनने में आ रहा है कि इन तीनों को एक साथ नहीं ला के अलग अलग इनका जो किरदार है उसको दर्शाते हुए पोस्टर्स आएंगे, तीन डिफरेंट पोस्टर्स। एंड पीपल आर वेटिंग, आई एम श्योर देर विल बी सो मच ऑफ बज ऑन द इंटरनेट, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, अपनी अपनी टिप्पणियाँ एंड अपने अपने कॉमेंट्स विद द पोस्टर्स। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म लव एंड वॉर, उसमें ज़रूर मज़ा आएगा। सो दैट इज़ रणबीर कपूर कमिंग फॉर इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म।

बेटा गलती से मिस्टेक मिस्टेक तो सबसे होती है। एक ना बहुत अच्छी खबर आई लैंडेड ऑन एंड मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने पॉपुलर हो चुके हैं, अब फुल फुल फिल्में उन्हें मिलने लगे हैं, लेकिन वो हाल ही में आज ही एक इंटरव्यू दे रहे थे विच आई फेल ऑन एंड आई थॉट आई शेयर इट विथ यू। ही सेड यू नो व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री और बॉम्बे आया मैं फिल्में करने के लिए, मैं कभी ना बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा सोच के नहीं आया था। लोग ज़्यादा हताश हो जाते हैं जब वे दे डू नॉट गेट द स्टारडम इमीडिएटली। सो ही सेड मैंने टेलीविजन में शुरू किया, आई डिड नॉट गेट एनी रोल एंड देन आई गॉट वन सीन रोल इन मूवीज। और बोले कि मुझे ना खाली वन सीन रोल मिलते थे और ये हुआ ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स तक मुझे खाली वन सीन रोल मिलते थे और किसी को भी किसी को एक छोटा सा रोल करना होता था, करवाना होता था, दे यू सेड नवाज को बुला लो वो कर लेगा। तो आई बिकेम दैट आई वॉज स्टार्टेड बींग रेफर टू एज एक सीन का रोल वाला एक्टर एंड दैट इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देन ही सेड फिर मैंने सोचा कि अब मैं ना एक सीन नहीं करूँगा। तो अब जब मेरे को सीन के लिए अप्रोच किया जाता था तो मैं बोलता था नहीं मैं एक सीन तो नहीं करूँगा, मुझे दो सीन दोगे तो मैं करूँगा। सो देन पीपल स्टार्टेड गिविंग हिम मोर देन वन सीन बिकॉज उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया एंड ही सेड आई विल डू बट आई डोंट वॉन्ट वन सीन बट आई वॉन्ट टू सीन। सो ही डिड नॉट गो बिग एंड बोल्ड एंड वाइल्ड विद दैट आइडिया बट उन्होंने एक एक कदम बहुत संभाल के रखा। हाउ लवली इज दैट, आपकी कोशिश रहे ना तो बस आप आगे बढ़ते रह सकते हो। वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है जब हमारे इंटेंशंस और हमारे वॉन्ट्स ज़्यादा होती हैं और वो हमें नहीं मिलता। सो इफ़ यू लुक एट योर लाइफ ऑल्सो यू माइट बी अराउंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बट यू डोंट अप्रिशिएट इट बिकॉज योर वॉन्ट्स आर मोर। नवाजुद्दीन एक्टर बने, अब तो उनके ऊपर फिल्म बन रही हैं लेकिन शुरुआत उन्होंने एक सीन के रोल के साथ किया था। इंटरेस्टिंग है ना, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एक एक करके अगर आप कदम बढ़ाएं तो आपके भी सपने इनके जैसे पूरे हो सकते हैं। बस सब कुछ एक साथ मिल जाए वही मुश्किल आ जाता है।

सुपर डुपर गलिया गोड़िया फ्रॉम द फिल्म दिल धड़कने दो। और कितने सारे स्टार्स थे और पूरे के पूरा ये एक क्रूज में शूट हुआ है। फिल्म एंटायर फैमिली गोज टू अ क्रूज ट्रिप एंड दिस वाज वाइल्ड एंड मस्त फिल्म। सुन रहे 104.9 FM फन एशिया रेडियो। पता है एक और खबर थी आपको देनी थी, यशराज फिल्म जो इतना रोमांस इतनी स्टोरी लाइन सब कुछ किया है उन्होंने, अब फाइनली घुस रहे हैं हॉरर फिल्म्स में। या यशराज फिल्म एंड हॉरर, यू डोंट नो हाँ, नो बिकॉज दे हैव नेवर डन अ हॉरर फिल्म। नाउ दे गेटिंग इन टू दिस हॉरर जॉनर एज वेल विथ द मूवी विथ वरुण धवन। और ये वाला फिल्म उनके लिए डायरेक्ट करने वाले हैं रॉकेट सिंह के, यू नो मूवी के रॉकेट बॉयज को जिसने डायरेक्ट किया था अभय पन्नू। ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट दिस फिल्म विथ वरुण धवन। अभी तक एवरीथिंग इज़ नॉट क्लियर बट ये रिलीज होगी 2027 में, ये क्लियर है। सो देयर यू गो, 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप। ऐसी खबरें ऐसी अपडेट्स यही मिल सकती है

तौबा तौबा सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजर रेडियो पर। ये तौबा तौबा गाना पता है दोस्तों, आप डिस्कवर किए हैं क्या हिमालयन बाजार को? ग्रैंड प्रेमी में है ये और दे आर सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट एंड एवरीडे एसेंशियल्स। आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लज़ेदार मज़ेदार हॉट समोसास, पानी पूरी, मसाला चाय और कॉफ़ी। शॉपिंग करते करते यार, वही तो कह रही हूँ, शॉपिंग करते करते कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 विद इन 5 miles एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज। जस्ट ऑफ हाईवे ऑफ 360 साउथ एट 5103 मैग्नाकार्टा बुलेवार्ड एंड दिस इज इन ग्रैंड प्रेरी हिमालयन बाजार। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए फनीजा रेडियो पर और पहुँच जाइए इनके इधर, क्योंकि ऑर्डर्स 50+ विद इन 5 miles पर ये डिलीवर भी करते हैं, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो शॉपिंग करते करते ये सब इंजॉय भी कर सकते हैं। वे एवरी आइल फील्स लाइक होम, दैट्स अ क्यूट वन, है ना, कि घर में ही हैं आप जैसे। भूख लगी है, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार, खा लीजिए, समोसे खा लीजिए, पानी पूरी खा लीजिए, यू नो देयर सो मच अवेलेबल। आप सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: Hey, tumne kabhi insurance liya?
15: Liya.
14: Kabhi policy samajh bhi aaya?
15: Nahi aaya.
14: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। दैट्स 972-863-7772।
16: विजिट www.sanadainc.com टुडे।
17: The wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
18: First five customers shopping for $150. Gets a free 10 gram silver coin.
17: India Bazaar, the people's store.
19: जिंदगी एक रंगमंच है
20: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोथिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
1: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
21: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: or sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
21: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
12: वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हो और अब वक्त आ रहा है आपके उस गेम शो का जिसके लिए जुम्मे के जुम्मे, फ्राइडे के फ्राइडे आपको इंतज़ार रहता है, वहीं पर जहां हम शुरू करते हैं एक क्लासरूम।
15: कर हिंदी हिंदी बोल,
16: कर हिंदी हिंदी बोल, कर हिंदी हिंदी बोल।
12: ओय ओय ओय ओय, जमूरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी। उर्दू इज़ अलाउड बट नॉट अलाउड इज़ अंग्रेज़ी, पता नहीं क्यों घुसी चले जा रहे हैं हमारी हिंदी भाषा में। फोन उठाइए, नंबर दबाइए, जुड़िए मेरे साथ। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। उसके बीच में जब तक आपका कॉल आए, चलिए अपनी ज़िंदगी को प्यार भरा मैसेज भेज दूँ, दैट आई लव यू ज़िंदगी।

0: टोटली लव यू जिंदगी 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे मेरे साथ। चलिए अपने फर्स्ट कॉलर को लेती हूँ मैं ऑन एयर। वेलकम, आपका स्वागत है गल हिंदी हिंदी बोल में। हाय।
1: हेलो। हाय,
0: बताइए मेरे लिसनर्स को अपना नाम प्लीज।
1: मेरा नाम विनीत है।
0: विनीत, वंडरफुल, आप कैरेक्टर में घुस गए हैं, आप सिर्फ हिंदी बात करेंगे।
1: जी
0: चलिए आपका वक्त शुरू करती हूँ आप। ओके
1: जी, बिल्कुल।
0: Awesome. Your time starts now. Mr. Vineet, कैसा गया आपका दिन?
1: दिन तो बहुत अच्छा गया।
0: Why? What did you do?
1: मैं अभियंता हूँ।
0: आप अभियंता? मैंने
1: आप
0: पूछा ही
1: हैं?
0: नहीं। मैं अच्छी हूँ, आप अभियंता है? मतलब अच्छा और अभियंता दोनों जन सिनोनिमस है क्या?
1: बिल्कुल समान शब्द सूचक है।
0: अच्छा, वेरी नाइस। आपने ये पूरे आप सामने लिख लिए क्या? एक के बाद एक कुछ भी पढ़ लेंगे। मैंने आपसे पूछा नहीं आपने काम क्या करते हो, वैसे मैंने ये पूछा व्हाट डिड यू डू टुडे।
1: अच्छा, वो तो अब काम आपने उसी में आप आपका आप उसी में नहीं था ना, आप जो पूछ रहे थे।
0: क्या
1: अगर मैं जो काम करूंगा वही तो बताऊंगा आपको।
0: क्यों आपने खाना नहीं खाया? आई थॉट यू वुड से राइट नाउ विद फैमिली डूइंग समथिंग, मुझे लगा ऐसा कुछ बोलेंगे आप।
1: बिल्कुल हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, अपने इस शहर का परिवार के साथ। अब नाम लूंगा तो आप उस अंग्रेजी में आप बता देंगे, तो इसलिए मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ। वैसे आप भी परिवार हैं तो बस आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो
0: मैं
1: बस
0: भी परिवार हूँ आपकी। सो स्वीट,
1: बिल्कुल
0: थैंक
1: आप
0: यू
1: नहीं
0: सो
1: है
0: मच।
1: क्या? आप बोलते हैं ना यहाँ के शहर का परिवार का नाम।
0: अच्छा, डैलस, डैलस
1: आपकी
0: इज अपना।
1: आपकी आपकी दिन कैसे जा रही है वैसे?
0: ओह, अभी तो शाम हो गई है। वेरी नाइस, आज फ्राइडे इज ऑसम बिकॉज आई गेट टू टॉक टू यू गाइस। तो फिर विनीत साहब,
1: बिल्कुल।
0: खाने का क्या प्लान है?
1: अब देखते हैं, शायद बाहर से कुछ खाना मंगवा लेंगे।
0: हाँ, आज तो कुकिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट?
1: जी हाँ, कभी कभी बीच बीच में थोड़ा रुक के बाहर से खाने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल
0: So what
1: से।
0: is your favorite cuisine?
1: कुछ भी जो मिल जाए प्यार से सब कुछ खा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भारत के सभी प्रदेशों का खाना अच्छा लगता है। हर में कुछ न कुछ खासियत होती है तो अच्छा लगता है। कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से, कभी उत्तर से, सब में स्वाद है,
0: आप
1: सब में
0: इतना
1: प्यार है। तो
0: सभी, बाप
1: बिल्कुल
0: रे बाप, इतना आप हमेशा ही ऐसे थे कि आज ही है। आप मतलब एक
1: जी,
0: आंसर
1: समझा
0: होना था
1: नहीं।
0: आपको। हाँ, कुछ नहीं, मतलब मस्ती कर रही हूँ कि आप हमेशा से ऐसे थे कि अभी है। आप भी, आपको इतना प्रांत का खाना पसंद है तो एक प्रांत का खाना मैं ही आपको दे देती हूँ। रेड हॉट चिली पेपर के पे जाना पसंद करेंगे?
1: जी कहाँ पे?
0: रेड हॉट चिली पेपर में?
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: कौन से शहर में ये?
0: इसी शहर में है और बहुत अमेजिंग खाना है। इंडो चाइनीज़ भी आप खा सकते हैं वहाँ पर और नॉर्थ इंडियन खाना भी खा सकते हैं। मैं आपको दे रही हूँ गिफ्ट क्योंकि आप जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: ऑसम, कहीं जाइएगा मत, आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर। चार चार उनके लोकेशंस हो गए हैं, लेकिन फ्रिस्को के अलावा यू नो दे हैव मकीनी, दे हैव रिचर्डसन, और आप यहाँ पर जाके यू कैन अवेल इन यू नो स्टार्टर्स हैं उनके दो, तो आपको वो मिल जाएगा। सो आई विल टेक यू इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज वन गिव अवे फॉर योर अमेजिंग हिंदी विनीत साहब, सुपर।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
0: क्या मस्त थे ना?

टू मच्छर गश्ती करते हुए अगर स्लिप एंड फॉल हो जाए, या फिर आप सॉरी यार कभी एक्सीडेंट हो ही सकता है, थोड़ी ना बोल के आता है कि मैं एक्सीडेंट हो रहा हूँ, बट अगर ऐसा हो जाए मटर गश्ती करते करते भी, आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट सेकंड्स में हो सकता है बट रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच लॉन्गर। तो फिर अगर हुआ है एक्सीडेंट या फिर स्लिप एंड फॉल, लेट अटर्नी ओमार ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू फोकस ऑन हीलिंग। वही तो, मटर गश्ती जारी रह सकती है, यही मैं बोलना चाह रही थी। बिकॉज ही विल फाइट फॉर द कॉम्पनसेशन यू एंटाइटल टू एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज वन। फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 4693005046। इसको तो मैं बोलूँगी आपके लिए फेवरेट में, इस कॉल फ़ोन नंबर को डाल दीजिए, बिकॉज यू नो एक्सीडेंट्स डोंट इन्फॉर्म एंड हैपन, इट जस्ट हैपन्स। एंड एट दैट टाइम यू ट्रस्ट मी, दिस नंबर इज लाइक माइंड ब्लोइंग टू हैव। या फिर आप विजिट कर सकते हैं attorneyomar.com फॉर योर फ्री कंसल्टेशन। उस समय कुछ और नहीं याद रहे तो इमीडिएटली omar.com जाइए और वहीं पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा आपको। दैट्स एन ऑल्टरनेटिव आई एम गिविंग यू। सो दिस सेगमेंट ऑफ माई शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय ओमार ख्वाजा, जो लेके आते हैं ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW। सुनते रहिए 104.9 FM, बताती हूँ आपको।

हाल ही में एक फिल्म आई थी, मैं वापस आऊंगा, दिलजीत दोसांझ है उसमें, एंड दिस हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली, एंड यू नो इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स टुनाइट। अगर इस वीकेंड आपको कुछ वॉच करना है OTT पर, दिस इज़ वॉट यू कैन गो फॉर। सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो। वैसे इस खबर के बाद ये बता दो, जो उमर ख्वाजा हमारे लिए ट्रैफिक अपडेट्स बताते हैं सो दैट आप सुरक्षित रहे, US-75 प्लेनो साउथ बाउंड लेन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट क्लोजर्स नियर प्लेनो पार्कवे ड्यू टू पुलिस इन्वेस्टिगेटेड ट्रैफिक इंसिडेंट्स, और I-820 North Richmond Hills westbound lanes face overnight closures following an early morning vehicle crash, or Dallas North Tollway DNT on going maintenance and upcoming phased overnight lane ramp closures between 635 and 35 east continue to create periodic night delays. So avoid कीजिए इन areas को, but otherwise you're all good. सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio मेरे साथ, और कल हिंदी में जुड़ना है तो फोन उठाइए, नंबर दबाइए

0: सुपर नेहा कक्कर्स वॉइस विद बादशाह एंड अमर आशी सुन रहे हैं 104.9 एफएम फानीजा रेडियो। लेती हूँ मैं अगले लिसनर को लास्ट ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल। वेलकम, स्वागत है आपका गर्ल हिंदी हिंदी बोल में।
1: जी जी, मैंने सुने था पहले आपका ये प्रोग्राम, मैंने कहा मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी।
0: ऑसम, वेरी नाइस। नाम क्या है आपका?
1: जी, नाम है नूर फातिमा।
0: नूर फातिमा जी, वक्त शुरू किया जाए आपका।
1: जी जी,
0: योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो फिर आप कितना सुनती हैं रेडियो?
1: मैं बहुत सुनती हूँ।
0: वेरी नाइस। कितना सुनती है? मतलब हर समय चलता रहता है?
1: हाँ, हर समय नहीं, मतलब जब भी फ्री होती हूँ खोल लेती हूँ।
0: फ्री होती हैं?
1: जब भी फ्री होती काम काज से फिर खोल लेते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: सबसे
0: तो
1: बहुत
0: फ्री क्या
1: अच्छा
0: हिंदी है?
1: दिल बहलाने का तरीका है।
0: फ्री हिंदी है?
1: क्या मतलब?
0: मतलब फ्री तो अंग्रेजी शब्द है ना।
1: ओ सॉरी, ये गलती हो गई।
0: एक गलती हो गई।
1: आज पहली दफा है ना वो।
0: हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: अच्छा,
0: आप मतलब लोग बहुत बहुत ट्राई करते हैं, आप तो पहली दफा है, करेक्ट?
1: जी जी जी,
0: बट थैंक यू सो मच,
1: ओके,
0: शुक्रिया जुड़ने
1: थैंक
0: के
1: यू।
0: लिए। बाय बाय। ओ माय गॉड, सो सैड। बट ये थी हमारी नूर फातिमा जी। और पता है, इफ यू आर ऑन H-1B, F-1, L-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू। येस, शी इज़ आवर वेरी ओन अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। जी, आपको मदद चाहिए तो उनको बताइए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com। एंड यू नो, व्हेन यू ईमेल हर, शी रिस्पॉन्ड्स बेटर, सो गो फॉर इट, ईमेल एंड यू विल हियर बैक फ्रॉम हर, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। सुनते रहिए 104.9 FM फानीजा रेडियो, यहाँ मैं आपके साथ। और बस वक्त थोड़ा ही बाकी है, बट जितना भी वक्त हो साथ हम हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट डू यू से?

0: थम गए तो वहीं रुक गए। बाइसिकल को देखिए, आप चलाते हुए रोक लीजिए, गिर जाएंगे एक तरफ। सो यू नीड टू कीप मूविंग। सो कीप मूविंग, लेट मी मूव आउट, लेट समबडी मूव इन, बट वी कीप मूविंग। गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग यू अ फ्लावर मॉर्निंग, अ कलरफुल नून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट। एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस डे फॉर यू टुमारो व्हेन यू स्टार्टेड विद अ कप ऑफ पॉजिटिविटी। अट्रैक्ट पॉजिटिविटी।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
8: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
10: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
12: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
14: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
13: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
14: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
13: इंडिया तक।
14: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
12: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: ओचो,
16: होको,
15: ओचो,
16: होको,
15: ओचो,
16: इट्स होको। अरे बस भी करो यार।
17: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
12: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में।
18: वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
19: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
18: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

प्रीतम का म्यूजिक बेनी दयाल की आवाज, और ये वाला गाना हॉलीडे फिल्म से लिया गया। अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा थे इस फिल्म में, लेकिन मे बी नॉट सच अ पॉपुलर सॉन्ग बट अ गुड सॉन्ग। प्रीतम का म्यूजिक बेनी दयाल की आवाज। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, नहीं पूरा पूरा ब्रेक इस पूरे हफ्ते के लिए, बिकॉज आने का प्लान है नेक्स्ट हफ्ते। दीजिए मुझे इजाज़त। जाते जाते ख्याल ये है, पता है लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यही इम्पोर्टेंट है। अगर आप

हेलो एंड वेलकम इसलिए क्योंकि कल भी हुई थी आप लोगों से मुलाकात. कल एक अलग टाइम पर हुई थी मुलाकात पारो की आप लोगों से, दैट इज बिफोर दिस टाइम 5 to 7. लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं रहूंगी 10 बजे तक. आज मैं तीसरी बार इस हफ्ते में आई हूँ, यानी कि थर्ड टाइम, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि कई काफी टाइम पहले आई यूज टू कम अलॉट मोर रेगुलरली, 4 दिन. तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जब कई दफा मुलाकात हो जाती है. जैसे कहते हैं ना, वैसे तो इस तरह की बात हो जाती है कि आप डेजर्ट के को कहते हैं अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ शुगर एंड ऑल दैट. लेकिन अगर आपको ये समझ लीजिए कि एक हफ्ते में आप चॉकलेट आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ब्राउनी भी खा रहे हैं, जो जो चीज़ें मुझे पसंद है, एंड इट्स जस्ट जन्नत जैसी फीलिंग आती है. वो अलग बात है कि बाद में कई बार कैलोरीज को लेकर थोड़ा दुख होता है तो हम उसको भूल जाते हैं. बट यस, आई एम वेरी एक्साइटेड. नवनीता जी को सुनती हुई आ रही थी मैं, और आई ऑलवेज इन्जॉय गल हिंदी हिंदी बोल, क्योंकि उससे मुझे कुछ कॉलेज की मेरी यादें ताज़ा हो जाती है. क्या ताज़ा हो जाती है कॉलेज की यादें, क्यों, वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. फिलहाल कोई गाना सुनना चाहते हैं, दैट इज फिटिंग टू द फ्राइडे इवनिंग मूड. यू कैन कॉल 972-355-5555. स्लो सैड 90s के पहले के गाने नहीं चलाएंगे इस वक्त.

त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव, तीन देवों की कहानी 80s की, उससे हिट हुआ है ये गाना। उसके बाद तो खैर धुरंधर में और कितने तरह के उसके रिमिक्स और इटरेशंस आ चुके हैं, लेकिन ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे दिल्ली की बहुत याद आती है, क्योंकि ओए हमारे यहाँ जो वर्ड है ना बड़ा ओए यूज होता है। एंड एटलीस्ट आई थिंक इज अ लॉट ऑफ लाइक पंजाबी फ्लेवर, एंड आई एम श्योर इन डिफरेंट कल्चर्स ओए भी अलग अलग तरह से यूज होता है, लेकिन हम लोग इतना एक जमाने में यूज करते थे कि किसी को नाम से ही नहीं बुलाते थे हम लोग स्कूल में कॉलेज में, ओए ओए ओए ओए क्या कर रहा है, ओए तू क्या कर रहा है, ओए तू क्या कर रही है, ओए ओए ओए बिकेम लाइक जस्ट सच अ परवेसिव वर्ड, मतलब हर चीज में ओए। जैसे होता ना नमक होता है, आप कोई भी सब्जी बनाएं तड़का लगाएं कुछ भी खाएं, लेकिन सैलड हो फ्रूट्स हो लेकिन थोड़ा सा नमक जरूर डाल देते हैं ताकि टेस्ट आ जाए फ्लेवर आ जाए। ओए कुछ इसी तरह का है दिल्ली का जो कल्चर है, अभी पता नहीं कल्चर हो सकता है चेंज हो गया, मुझे यहाँ आए हुए यूएस में बहुत सालों साल बीत गए हैं लेकिन आई स्टिल मिस द टाइम जब हर कोई ओए ओए हुआ करता था। एंड चलिए अगला गाना मैं चलाती हूँ और ये अशोक जी की रिक्वेस्ट पर है। अशोक जी, जैसे मैं आपसे फोन पे भी कह रही थी बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आपसे बात हुई, और अशोक जी की एक खासियत बताऊंगी मैं, क्योंकि इतने सालों से अशोक जी हमारे लिसनर हैं और कॉल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें नॉलेज बहुत है, और मैंने आपसे बात कही भी है अशोक जी की आपको काफी नॉलेज है, और मुझे लगता है कि आप गाने बहुत सुनते हैं घर में।

किसी की खुशी के लिए अगर दर्द सहना पड़े तो कुछ तो गड़बड़ है. क्योंकि दैट इज आई फाइंड दैट दिस लिरिक्स एंड देयर मीनिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन फिलहाल बताना चाहती हूँ आपको, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यू आर एक्साइटेड. और अभी मेरे पास कॉल भी आई थी, वसीम साहब ने कहा दैट ही इज एक्साइटेड टू अटेंड एज वेल जो IANT का होने जा रहा है इवेंट. सो आई डू वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज गोइंग टू बी इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे. एंड इफ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट, यू शुड सेलिब्रेट. आई एम श्योर यू वॉन्ट टू at IANT's in Anand Bazaar 2026 on Saturday, August 15th from 2 p.m. onwards at the Co America Center Frisco. और सबसे अच्छी बात यह है कि completely indoors है and it is free for everyone. Enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping. Bring your family, bring your friends and be part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration, which is going to be IANT Anand Bazaar. ये बहुत बड़ा event होने वाला है and you know 80 साल कंप्लीट हुए हैं. 47 जो है वो पहला इंडिपेंडेंस का टाइम था, या ये कह सकते हैं उस समय पहला बर्थ हुआ था, इंडिया का जन्म हुआ था, जन्म रीजन्म कह सकते हैं, क्योंकि इतनी पुराना देश है, इतना पुरानी सभ्यता है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, तो जन्म तो इसका कैसे हो सकता है. सबसे पुरानी ओल्डेस्ट अगर कोई चीज है, लेकिन पुनर्जन्म हुआ था ये कह सकते हैं. इट वॉज इट गॉट द फ्रीडम जो पकड़ के रखा हुआ था अंग्रेजों ने, उससे छुटकारा मिला था और एक रिलीफ मिला था. तो 47 वॉज द फर्स्ट सेलिब्रेशन एंड ये जो होने जा रहा है 2026 में, लकीली सैटरडे भी है तो छुट्टी भी है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं. 15th August, दैट्स गोइंग टू बी 80th इंडिपेंडेंस डे. 8 decades पूरे हो गए हैं इंडिया के, क्या मजेदार अच्छी बात है. टाइम डेफिनेटली टू सेलिब्रेट.

0: बहुत बहुत मेमोरीज हैं इस गाने के साथ मेरी जुड़ी हुई और अभी मेरी बात भी हुई. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कपल सुमित एंड संगीता. एक्सट्रीमली टैलेंटेड और वेरी वार्म कपल. और सुमित जो हैं हमारे वो लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं एंड ही हैज़ इज़ अ डायरेक्टर, ही डायरेक्ट प्लेज. और संगीता भी बहुत सपोर्ट करती हैं उनको और काफ़ी ज़्यादा प्लेज और थिएटर में इन्वॉल्व है. तो एक गाना मेरी तरफ से मैं चलाना चाहती हूँ संगीता और सुमित आपके लिए. लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी. ये जो गाना है इसकी बहुत यादें जो मैंने कहा जुड़ी हुई हैं. गर्ल्स लाइक टू स्विंग हम लोगों ने एक प्ले किया था लव अनलॉक्ड, जो DFW प्ले की उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर. और उसके कई सारे शिकागो में, बॉस्टन में, अलग अलग जगह वी वर एबल टू डू इट, डैलस में, हाउसफुल, हर जगह. एंड सुमित वॉज द राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर, ऑल थ्री. सो ये जो गाना था इस गाने के साथ हमने एंड किया था. और जब भी ये गाना बजता है मुझे, मेरे सामने लोग जो खड़े हो गए थे इतने सारे, जो ऑडियंस है स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए और जो क्लैप्स मिले थे, दैट इज सच अ वंडरफुल मेमोरी. सो यस, आई फील दैट आर्टिस्ट, ऑल आर्टिस्ट नीड इज एप्रिसिएशन. कुछ और नहीं चाहिए होता आर्टिस्ट को, पैसा, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो मटीरियल चीज़ें हैं, दैट इज नॉट वॉट दे वॉन्ट. ऑल दे वॉन्ट इज दैट पीपल एप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव put in entertaining, especially in performing arts, entertaining people. Funisha Radio, you are on air.
1: On air?
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, on air हैं.
1: अच्छा, मुझे तो एक गाना request करना था.
0: बिल्कुल, on air कर दीजिए, पूरा Dallas सुनेगा. कौन सा गाना request करना चाहते हैं जनाब?
1: सनम मेरे सनम, मुझे आजकल नींद आती है कम, हम movie का है. और वो मैं अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि रात में उसकी नाक से आवाज ज्यादा आती है.
0: आपकी है तो डेडिकेट करना चाहते हैं, यहाँ तक ठीक है, बाकी हम डिलीट कर देंगे ऑन एयर से. हाउ अबाउट दैट? नाम क्या है सर आपकी वाइफ का?
1: सोनम.
0: अच्छा, उनका नाम सनम है इसलिए डेडिकेट कर रहे हैं. अरे वाह, वेरी नाइस. और जरूर चलाती हूँ मैं ये गाना, एक छोटा सा गाना, फिर उसके बाद आपका गाना चलाती हूँ. थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू.
0: तो ये अगला गाना संगीता असुमित आपके लिए.

दोस्तों यार मैं हूँ पारो, बताना चाहती हूँ आपको दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शंस, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ्स स्पेशल मोमेंट्स। एंड दे आर वेलकमिंग यू नाउ एट देयर न्यू लोकेशन। कहां पर है इनके? ये मेन स्ट्रीट विच इज 13145 स्वीट 220 Main Street, Frisco, 75035. And Shri Krishna Jewelers, it's crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. मतलब ये समझ लीजिए भारत आजाद हुआ है उसके 20 साल बाद से, यानी कि अगर इंडिया जो है 80 years complete कर रहा है इस साल, तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स 60 complete कर रहा है। What an amazing journey. And with that, let's listen to the song जिसकी अभी request on air करी थी हमारे सर जी ने। नाम उनका मैं नहीं जान पाई, लेकिन सनम, उनके सनम के लिए जिनका नाम भी सनम है, हम चलाते हैं ये गाना। And with that, we'll be heading into a short commercial break. यहीं लौटेंगे। Thanks for listening to One Fun Asia Radio 104.9 FM. ये गाने की तो उन्होंने request नहीं करी थी उनके गाने को चलाती हूँ।

वेलकम बैक, वेलकम बैक. दिस यारो, मैं हूँ पारो. सुन रहे हैं आप मुझे. 8 बजे तक चलेगी हमारी ये सवारी, 10 बजे तक ये गाड़ी. एंड आई होप यू आर एंजॉइंग. आई एम रियली डेफिनेटली एंजॉइंग अ लॉट योर कॉल्स एंड द स्वीट थिंग्स दैट यू हैव टू से अबाउट फनीशा, अबाउट द शो, अबाउट योर्स ट्रूली, यानी कि पारो. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब नवनीता का मैं शो सुनती हूँ, क्योंकि आ रही थी तो मैं सुन रही थी, और कई दफ़ा मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा गल हिंदी हिंदी बोल, और उससे मुझे एक बहुत याद आ जाती है. जैसे मैंने कल भी कहा था, कल जब शाम को मैंने शो किया, कि 80-90% टाइम, ये रिसर्च ने कहा है, मैंने नहीं कहा, रिसर्च से ये प्रूव किया गया है कि 80-90% ऑफ द टाइम एन एडल्ट स्पेंड्स इन द पास्ट. यानी कि बहुत सारे हम ख्यालों में रहते हैं. जब हमें लगता है कि हम शायद प्रेजेंट में हैं या फ्यूचर में हैं, तब भी कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट में होते हैं. पास्ट को हम कभी छोड़ते नहीं हैं. चला गया है, वक्त निकल गया है, लेकिन अभी भी हमसे जुड़ा हुआ है. एंड आई एम ऑलवेज टेकन बैक टू द टाइम इन कॉलेज. दिल्ली में कॉलेज था मेरा, और हमारा जब फेस्टिवल होता था कॉलेज का, एनुअल फेस्टिवल, एक एनुअल होता था और 2-3 होते थे, मतलब थोड़ा मस्ती वाला कॉलेज था, तो मस्ती ज्यादा ही होती थी. लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट होता था जो मुझे बहुत पसंद था, और वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में मैं हिंदी में लिखा करती थी और पढ़ा करती थी. प्रेमचंद मुझे बहुत पसंद थे, मैं काफी उनके उपन्यास कहानियां वगैरह पढ़ती थी. एंड आई यूज्ड टू लाइक हिंदी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, अच्छी क्वालिटी की हिंदी. तो एक हमारा कॉन्टेस्ट होता था वहां पर, लेकिन वो मैं कभी जीत नहीं पाई, पर मैं कोशिश जरूर करती थी और मैं वहां जाके बैठ जाती थी. एंड दैट भी हिंदी जैम में क्या होता था कि एक सर्कल में लोग बैठते थे, एंड इट यूज टू स्टार्ट विद वन पर्सन, और आपको कुछ भी बोलना है, और जैसे आपने माधुरी दीक्षित के बारे में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आप जो भी बोले उसमें एक वर्ड भी अगर आपका हिंदी की बजाय अगर किसी इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज आपने बोल दिया, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलनी होती थी, तो अगर आपने कुछ स्लैंग बोल दिया, यार बोल दिया, कुछ बोल दिया जो मे बी उर्दू में है या स्लैंग है, तो यू विल बी आउट. और टाइम चलता रहेगा, एक मिनट का होता था ये, तो लेट्स से आपने 5 सेकंड बोला, अब ये अगले पे चला जाएगा, फिर अगले पे चला जाएगा, ऐसे चलता रहता था, और इतना फास्ट जाता था ये, मजा इतना आता था. और द पीपल हु वर कंडक्टिंग इट, वो बिल्कुल एकदम महारथी थे, हिंदी के गुरु थे, क्योंकि वो एकदम से पकड़ लेते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो चलता रहता था. एंड द क्लॉक वुड स्टॉप ऑब्वियसली अगर कोई बोलना बंद कर देगा तो, लेकिन जैसे जैसे जैसे गेम चलता रहेगा, क्लॉक चलती रहेगी, एंड यू हैव टू बी रियली फास्ट. एंड जहां पर उस बंदे ने छोड़ा है, उसी डायलॉग से, उसी सेंटेंस से आपको शुरू करना है, और मेक श्योर कि आप हिंदी बोलें, और बिल्कुल शुद्ध हिंदी. और इतने मजे आते थे, क्योंकि ऐसा जीतना बहुत मुश्किल होता था. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड विद दिस गेम, कि इंक्लूडिंग मी, कि जो मैं अपनी हिंदी बड़ी अच्छी समझती थी, और मुझे लगता था मुझे हिंदी पढ़ना लिखना इतना अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, दिल्ली के लोग तो वैसे ही एकदम खराब होती है उनकी हिंदी, वो अलग बात है. लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड, कि हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, जिसको हम हिंदी समझते हैं उसमें बहुत मिलावट हो चुकी है. एंड नॉट इट्स अ बैड थिंग, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड, एंड व्हाट वी थिंक इज समथिंग इज एक्चुअली नॉट दैट थिंग. लेकिन मैं, अगर आप मुझे पारो समझ रहे हैं, तो मैं पारो ही हूं.

जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है, मतलब ये इश्क इतना डेंजरस चीज है, तू कहीं भी छुपेगा, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो धमकी दे रहा है, ये प्यार व्यार की बातें कर रही है क्या, वायलेंस की बातें कर रही है खलास गाने में, तू कहीं भी छुपेगा ये ढूंढ लेगा तुझे और कर देगा खलास। ऐसे इश्क नहीं की बातें नहीं करते हम, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आपको छुपना है छुप जाइए, निकलना है निकल जाइए, जब निकल कर आएंगे तो हम उसी प्यार भरी नजरों से आपको देख रहे होंगे। हम इस प्यार में, इस इश्क में बिलीव करते हैं, ये खलास सलास करने वाले नहीं, हाँ दुखों को खलास कर देता है, सैडनेस और लोनलीनेस जो है, जो हम बहुत लोगों को घेरे रहती है उसको खलास करता है, लेकिन और बहुत बढ़ाता है चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बहुत बढ़ाता है। और इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ, दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या आपके स्टार्टअप है या यू आर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स, फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलेशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब में आपकी मदद करते हैं टू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी। ये ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं एंड दे आर कमिटेड टू योर सक्सेस। AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. इनका नंबर आप नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर सकते हैं ड्राइव कर रहे हैं तो पारो को फिर कॉल कर दीजिए और मैं बता दूंगी, विच इज 4699429888, या फिर इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं विच इज agfintechs.com एंड डेफिनेटली विजिट देयर वेबसाइट टुडे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी अशोक जी से बात हुई और मेरे पुराने दोस्त सुमित और संगीता भी सुनते हुए जा रहे हैं, उन्होंने भी कॉल किया और अभी तो कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो दोस्त बन गए हैं और कुछ हैं जो दोस्त हैं और लिसनर्स हैं और आई थिंक जो लिसनर है वो दोस्त है और जो दोस्त है वो लिसनर है, दैट्स हाउ आई फील। तो एक हमारे बड़े प्यारे कपल हैं डालस के जो अभी जिन्होंने मुझे कॉल किया और वो भी सुनते हुए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी लेकिन मैं पहले उनकी तरफ से एक गाना लगा देती हूं क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं वो इज वेरी वेरी नाइस कपल, उन्होंने सोहेल जी ने अपनी वाइफ यानी कि मिरियम जी के लिए गाने की रिक्वेस्ट करी है, सो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। बहुत प्यारी आवाज है मिरियम जी आपकी, तो ये गाना आपके लिए।

0: What a wonderful song. Yes, काफी टाइम बाद मैंने एक्चुअली इस गाने को सुना. दिस इज फ्रॉम द फिल्म रेड 2. और जैसे मैं कह रही थी आपसे दैट आई डू वांट टू से बहुत हमारे प्यारे लिसनर्स और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज दे आर द थर्ड कपल दैट आई हैव स्पोकन आज इन टुडे एंड वंडरफुल कपल जिनसे आज मैंने आज कई जैसे मैंने कहा और भी कपल से बात करी है. दिज आर ऑल्सो सम दैट यूजली कॉल. और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है व्हेनेवर आई स्पीक टू कपल्स स्पेशली व्हेन आई जब मैं कई दफ़ा उनसे बात करती हूँ कर चुकी हूँ. जैसे सोहेल मरियम जी से मेरे ख्याल से मैंने कई दफ़ा बात करी. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता आप सुन रहे हैं सोहेल जी और मरियम जी दैट आई हैव नेवर स्पोकन बाय योर सेल्फ. मैंने अकेले सोहेल जी से बात नहीं करी, अकेले मरियम जी से बात नहीं करी. मैंने हमेशा आप दोनों जब साथ होते हैं तब बात करी है जहाँ तक मुझे याद है. एंड मेनी टाइम्स वी हैव स्पोकन. और इससे मुझे ये एक मैं एनालिसिस निकाल सकती हूँ कि आप साथ ज़्यादा रहते हैं. और ये इज सच अ वंडरफुल थिंग. जब भी मैं कपल्स को ऐसा सुनती हूँ कई दफ़ा जब कॉल करते हैं हमेशा साथ होते हैं और खुश होते हैं और आवाज़ से पता चलता है. कभी शौहर जो है वो बीवी को डेडिकेट करते हैं, बीवी शौहर को डेडिकेट करते हैं. इट्स जस्ट वंडरफुल. तो आई डू वांट टू से दैट कि मुझे बहुत खुशी होती है हमारे लिसनर्स खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने कपल के साथ है, अपनी सिग्निफिकेंट अदर के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है. एंड दैट इज वॉट फनीशिया रियली लाइक्स. क्योंकि हमारा तो मोटो ही है ब्रिंगिंग द कम्युनिटीज. में मैं एक जो चीज और ऐड कर दूंगी, ब्रिंगिंग द फैमिली कम्युनिटी एंड आवर रूट्स टुगेदर.
1: रिमिक्स कर देते हैं सर. सर हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता. नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार.

Let me tell you about Tanishq. This part of the show is brought to you by Tanishq. और Tanishq का एक जबरदस्त फेस्टिवल, डायमंड्स का फेस्टिवल चल रहा है. So let me tell you about diamonds because I know कि बहुत सारे हमारे डालस के जो लिसनर्स हैं, वैसे तो मैं लिसनर्स हमारे इतने प्यारे हैं, उनको ही हीरा मानती हूँ, लेकिन दे लव एंड आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन आर बिग इन टू डायमंड्स एंड दे लव दैट. लेकिन कई बार आप सोचते हैं डिस्काउंट मिल जाए तो मजा आ जाए, एंड दैट इज वॉट Tanishq फेस्टिवल इज all about. And diamonds aren't just forever. They are even more irresistible during the Tanishq Festival of Diamonds. So enjoy kariye aap 25% off on diamond value and making charges plus 0% deduction on the exchange of old gold above 10 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. Visit Tanishq in Frisco. Thodi der mein, yani ki 10 baje tak rahungi main aapke saath, to 9 baje ke baad we are also going to do a giveaway. Aur iske साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडेज डे. आज के दिन एक बड़ी खासियत या खास चीज़ है एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस द होल डे एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज़ की और जिस पर्टिकुलर दिन की, बिकॉज टुडे इज 7th August एंड किस वजह से ये फेमस है, एटलीस्ट इन दी सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के अलग अलग प्रांतों में, वो मैं आपको बताऊंगी. और आई फील इट्स गोइंग टू रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ यू बिकॉज आई एब्सोल्युटली हैड बीन थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दिन, दिस पर्टिकुलर डे विच इज 7th August. लेकिन उसके साथ ये भी बता देती हूँ आपको कि अगर आप पारो के साथ, यानी कि मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे पारो कौशिक है मेरा फेसबुक आईडी एंड इंस्टाग्राम is Princess Paro 27, ताकि off air भी if you have any suggestions, anything that you want to share, please, you can do that.

क्यूटी क्यूटी पाई एंड यस आई होप योर नाइट इज वंडरफुल एंड आपकी नात शाम जो फ्राइडे शाम है वो बहुत ही क्यूटी क्यूटी पाई हो बिल्कुल इस गाने की तरह. एंड विद दैट वी आई एम गोना प्ले दिस नेक्स्ट सॉन्ग. उसके बाद हम एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे और लौट कर यहीं आएंगे ऑन 104.9 FM पारो के साथ. अभी आधा है शो और आधा है बाकी.

0: 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: भूख लगी, जोरों की
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

वेलकम बैक, वेलकम बैक दोस्तों. यारों मैं हूँ पारो एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर कॉल्स. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर ड्राइविंग, आप जहाँ जा रहे हैं, क्या कर रही हैं, व्हेन यू शेयर विद मी आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट. वैसे तो मैं फ्राइडे इवनिंग आपको बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आप बताते हैं मुझे. तो मैं यहाँ पर हूँ फनीशिया रेडियो के स्टूडियो में, फनीशिया के स्टूडियो में आई एम हियर इन मकिनी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी हैं आप, गाड़ी में जहाँ पर भी जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर्स डालस के बाहर भी Oklahoma और डिफरेंट places that I am there with you. और मैं भी एक वर्चुअल सैर कर रही हूँ आप लोगों के जरिए, आप लोगों की बातों के जरिए, और आप लोगों जो मुझसे शेयर कर रहे हैं उसके जरिए. सो यस, कीप शेयरिंग एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड आई कैन टेक अ फ्यू मोर रिक्वेस्ट. 972-355-5555 है स्टूडियो का नंबर.

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अर्चना दीदी रिट्रीट. जी हाँ, अर्चना दीदी की रिट्रीट होने जा रही है एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और कई लोग मुझे कॉल करके, कल मैंने जब शो किया था और इस हफ्ते पहले भी मैंने ट्यूजडे को शो किया था, सो पीपल वर आस्किंग मी अबाउट, सो लेट मी गिव यू सम डिटेल्स ऑन दिस. ये आज से शुरू हुआ है, सो 7th, बट इट इज ऑल्सो ऑन 8th and 9th. सो एक्सपीरियंस पीस म्यूजिक एंड मेडिटेशन विद अर्चना दीदी एट अ फ्री 3-day रिट्रीट इन DFW. तो आज जो अगस्त 7th की थी, दैट वॉज भारतीय निवास इन रिचर्डसन. और 8th और 9th मॉर्निंग को इट इज एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो एंड अगस्त 8th इवनिंग एट DFW टेम्पल एकता मंदिर इन अरविंग. यहां पर मेडिटेशन है, सोलफुल म्यूजिक एंड फ्री वेजिटेरियन प्रसाद. आप रजिस्टर कर सकते हैं, इट इज फ्री रजिस्ट्रेशन नाउ दैट यू कैन डू एट meditation.funasia.net. तो ये वीकेंड चाहते हैं अच्छा जाए, पीसफुल जाए और बहुत काम, आप कामनेस की कामना करते हैं जिंदगी में शांति रहे इसकी कामना करते हैं. और कैसे करा जाए ये देखिए, कामना तो बहुत लोग करते हैं लेकिन करना असल में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो हमारा ऐसा एक स्पाइडरमैन की अभी मूवी रिलीज हुई है तो मुझे लगता है बिल्कुल स्पाइडर की तरह है, इधर उधर जो है जाता रहता है. कभी आपने स्पाइडर पकड़ने की कोशिश करी है? नहीं, भाग जाता है, राइट. तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही है, इसके बहुत सारे बड़े बड़े वेब्स हैं और उन वेब्स में कहीं खो जाता है वो. तो दैट इज हाउ आई फील, आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव एंड कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाई सो मेनी वेब्स ऑफ थॉट्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर वरीज. मतलब फ्यूचर भी इसमें, पास्ट भी इसमें, प्रेजेंट तो कहीं खो ही जाता है. लेकिन अगर आप प्रेजेंट में और जीना चाहते हैं और जिंदगी को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना हल्लू हल्लू, अगर हैदराबाद की स्टाइल में बोले, थोड़ा हल्लू हल्लू चले, एंड इफ यू वांट दैट विच आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स, देन यस, दिस इज द रिट्रीट फॉर यू. एंड फिर से बता देती हूं, meditation.funisha.net. आज का दिन है क्या खास, बताऊंगी अभी आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: Breaking news. Bob attempts suicide in the car.
1: आज का दिन जो है अगस्त 7th, तब कुछ हुआ था हिस्ट्री में. वैसे तो बहुत कुछ बहुत सालों में हुआ था, लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ 1905 में बंगाल में हुआ था. याद है जैसे स्वदेशी मूवमेंट आज के दिन शुरू हुआ था, लॉन्च किया गया था. एग्जैक्ट डेट आज ही के दिन, यानी कि अगस्त 7th 1905, कैलकटा टाउन हॉल. अब तो कोलकाता है नाम, लेकिन उस समय कैलकटा था, कैलकटा टाउन हॉल. एंड द रीजन इट वॉज डन और द व्हाट वॉज द मोटो बिहाइंड इट इज टू बॉयकॉट फॉर goods and promote domestic indigenous industries. मतलब यहाँ पे बनाएं, लोकल बनाएं और लोकल कपड़े बनाएं, लोकल गुड्स बनाएं, और बाहर के जो इम्पोर्ट किए जाते हैं और जिससे पैसे बाहर वाले कमाते हैं उसको बंद किया जाए. सो दैट वॉज एन अटेम्प्ट टू, ये कह सकते हैं, टूवर्ड्स फ्रीडम. फ्रीडम उसके बहुत साल बाद मिली है, 42 years बाद मिली है. लेकिन बॉयकॉट करना और रेजिस्ट करना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. और आज का ही दिन इतना ये इसको मनाया जाता है, माना जाता है, मुझे लगता है बहुत रीजन से. ऑब्वियसली हम लोग फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, हमारे फ्रीडम सेलिब्रेट करने की तरफ जा रहे हैं. 80th सेलिब्रेशन जो इंडिपेंडेंस डे का है वो करने जा रहे हैं. एंड बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर ऑल द रेजिस्टेंस दैट हैज गॉन बिफोर दैट. मतलब 1947 के पहले कितने रेजिस्टेंस मूवमेंट हुए हैं. लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है बहुत सारी हमारी जो लिसनर्स हैं, जो मोहतरमा हैं, जो लेडीज हैं हमारी सुन रही होंगी, उनको भी बहुत पसंद होगा, वो है साड़ी. यस, साड़ी जो है वो उसको हमारी ये धरोहर है, ये कह सकते हैं, बिकॉज ये हमारे ही कल्चर और हमारे ही जमीन पर इसको ये बनाया गया है, या इसको इस ये कह सकते हैं कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है वहीं से शुरू हुई हैं. या सम ऑफ द थिंग्स वी हैव बोरोड फ्रॉम अदर मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट, बट इंडिया का ही प्रोडक्ट है साड़ी और अलग अलग तरह की हैंडलूम साड़ीज. सो टूडे इज एक्चुअली हैंडलूम डे. जी हाँ, बिकॉज ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट अगस्त 7th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे. तो मैं जानना चाहती हूं, मैं क्यूरियस हूं, थोड़ी देर में गिव अवे भी करेंगे, दिस इज नॉट अ गिव अवे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि कौन सी हैंडलूम साड़ी आपको पसंद है. बहुत सारी हैं भारत में, अलग अलग प्रांत की, हर एक प्रांत की एटलीस्ट एक है, कईयों में तो एक से भी ज्यादा है, दैट आर हैंडलूम साड़ीज. तो आपको कौन सी पसंद है, फिर मैं बताऊंगी मुझे कौन सी पसंद है. मुझे बहुत सारी पसंद है, बट इफ अगर आपसे कहा जाएगी सिर्फ एक ही हैंडलूम साड़ी का नाम लीजिए जो आपको पसंद है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, कांजीवरम, या फिर बहुत कॉटन की अलग अलग वैरायटी होती है, बंगाल की हैंडलूम साड़ीज होती हैं, और पैठनी होती है, तो बहुत इस तरह की साड़ी है. इफ देयर इज समथिंग दैट इज स्पेशल टू योर प्लेस, जो आपकी जगह की है या आपको पसंद है, आप पहनते हैं, चंदेरी हो सकती है, कोई भी ऐसी है, 9723555555, शेयर दैट ऑन स्पेशल टूडेज डे विच इज नेशनल हैंडलूम डे.

0: खाली साड़ी नहीं, बहुत चुनरी, बहुत इस तरह के गारमेंट्स होते हैं हमारे जो देसी होते हैं, दैट आर हैंडलूम के बने होते हैं. सो यस, टुडे इज नेशनल हैंडलूम डे. फिलहाल बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्टगेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्टगेज. सिंस 1998, ड्रीम होम मॉर्टगेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मॉर्टगेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. ये 50 states licensed hain. Their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs. Chahe aap pehla ghar khareed rahe hain ya fir aap upgrade kar rahe hain, refinancing kara rahe hain, aap kuch investment ke liye khareed rahe hain, whatever is your plan, they are going to be with you in this journey. Start your home ownership journey with confidence today. Aap call kar sakte hain, inka number hai 972-245-5626, aur ya fir aap unki website par ja sakte hain, which is dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage is where dream homes happen. सपने जहां बनते हैं. हमारे कोई कॉल कर रहे हैं. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाय
0: हाय.
1: हाय, माय नेम इज दीपा.
0: हाय दीपा.
1: एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट माय साड़ी. एक्चुअली
0: श्योर.
1: या आई लव वेयरिंग साड़ीज एंड माय इन-लॉज आर फ्रॉम ओडिशा. सो I have a lot of Sambalpuri sarees. And the interesting part I want to tell, that this time I bought a black Sambalpuri saree, and my mother-in-law bought a red Sambalpuri saree, the same print for me. And now I have two of them in different color.
0: Wow, that's amazing. Buy one, get one, two wali baat ho gayi. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी पसंद है. इंटरेस्टिंगली मेरे पास अभी तक नहीं है. व्हाट हैपेंड इज कि हाँ नहीं बिल्कुल, आप यही मैं सोच रही हूँ आपसे बोलते हुए कि वाई वाई पारो वाई. तो अब मैंने जरूर, थैंक यू सो मच दीपा. ऐसे ऐसे मत बोली, ऑन एयर बोल रहे हैं. शायद हो सकता है पूरा डैलस आपसे बोरो करने लगे फिर तो.
1: आई लव वेयरिंग साड़ी एंड इफ समवन विल बोरो टू वेयर समथिंग आई वुड लव दैट.
0: एब्सोल्युटली, दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट. सिर्फ यही नहीं कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं, बट ये भी दैट मुझे ऐसा लगता है कि आप हैंडलूम का जो आपके लिए, आपके मन में जो प्यार है हैंडलूम के लिए, संबलपुरी के लिए, वो आप लोगों से चाहती हैं कि लोग उसको भी अप्रिशिएट करें. एंड यस, आई ट्रूली फील दैट एज वेल. संबलपुरी सो ब्यूटिफुल. संबलपुरी सिल्क मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है.
1: When you tie that sari, it actually comes out very beautiful. So yeah, try cotton
0: one too. Upar jo designs hote hain na traditional, ye hathi and all those kind of jo hamare bahut hi aisa lagta hai ki puri sanskriti hamari unpe chapi hui hai. That's how I feel.
1: Yeah, actually they're very like, you get connected to those things. I'm mostly with sarees, but yeah, like there are different things. You can even get the shirts and kurtas in Sambalpuri prints.
0: Wow, that's amazing. And मैं दो या तीन साल हो गए मैं गई थी पुरी, एंड वो जो पूरा एरिया है लाइक दैट यू नो टेम्पल्स एंड ऑल दैट, तब मेरा बहुत मन था, लेकिन आई थिंक नहीं हो पाया, टाइम वगैरह कम था. और बट यस, पूरे कहीं पर भी मिल जाती है. खैर संबलपुरी तो खड़ी उड़ीसा जाने की जरूरत नहीं है. पर कहाँ से आप उड़ीसा में?
1: कटक.
0: ओ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. ओके, थैंक यू सो मच दीपा फॉर शेयरिंग दैट ब्यूटिफुल कल्चर एंड ब्यूटिफुल साड़ी.
1: गुड नाइट.
0: गुड नाइट. बाय. हमारे और कोई लिसनर हैं जो साड़ी के बारे में शेयर करना चाहते हैं. दीपा ने बताया संबलपुरी के बारे में. मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, मुझे जैसे वैसे तो मुझे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी चूज करना, बिकॉज आई लव ऑलमोस्ट ऑल हैंडलूम्स, मतलब एक से एक बढ़कर है. बट पर्सनली जो शायद मैंने ज्यादा पहनी है और मैंने ज्यादा ओन करी है, मेरे पास है, और कौन सी क्यों मुझे पसंद है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. बट लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. साड़ी होती है तो फॉल भी जरूरी है.

दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो। वक्त बहुत ऐसे ही फिसल जाता है मुझे लगता है जिंदगी का, हमारे शो का। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यस, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आपके कॉल्स आते हैं, मुझे पता चलता है कि यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आई एम डेफिनेटली हैविंग अ ग्रेट टाइम। मैंने आप लोगों से बात करते करते एक छोटी सी प्यारी सी रील भी बना ली एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग इट। जब ये गाने चलते रहते हैं, आई एम इंजॉइंग। आप लोग मुझे पता है सुनते हैं कार में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। कई लोग हमारे लिसनर्स बोलते हैं कि वो घर में डिनर कर रहे हैं, डिनर बन रहा है और पीछे रेडियो चल रहा है, पारो आपकी आवाज़ आ रही है, बैकयार्ड में बारबेक्यू हो रहा है और पारो आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोगों के घरों में, बैकयार्ड में और वहां से होते होते आपके दिल तक जा रही है। दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। जो हमारा दिल से दिल का रिश्ता है, एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता है, जो एक यूनिवर्सल रिश्ता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड दैट इज़ वॉट वी सेलिब्रेट, दैट इज़ वॉट आई सेलिब्रेट ऑलवेज एंड हियर एज वेल इज़ वॉट आई एम डूइंग ऑन फनीशा रेडियो। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड थोड़ी देर में गिव अवे आएगा। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, गिव अवे इज गोना बी रिलेटेड, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, विच इज नेशनल हैंडलूम डे। उससे कुछ रिलेटेड होने वाली है बात। तो ऑल फॉर ऑल माई सारी लवर्स, हैंडलूम लवर्स, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों बताना चाहती हूँ, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन। अगर फन पिज्जा किचन में अभी तक आपने नहीं खाया है और सिर्फ आपने सुन सुन के आपके मुंह में पानी आया है तो आपने बहुत कुछ जिंदगी में मिस किया है। एंड आई डू वांट टू टेल यू दैट यू शुड गो देयर फॉर श्योर। एंड इफ यू वांट टू गेट अ फ्री गिव अवे, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। पहले मैं फन पिज्जा किचन के बारे में बताती हूँ और फिर हमारे सवाल के बारे में आपको बताऊंगी। So Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican inspired pizza lineup, and these just aren't pizzas, they are a full on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, the seafood packed senor camarón and the loaded mucho macho pork, every bite is bold, exciting and made to impress. To bilkul aap Fun Pizza Kitchen par jaiye and taste the new obsession फॉर योर सेल्फ। मतलब पुराने उनके जो फ्लेवर्स हैं वो भी अब बहुत बहुत ज्यादा हिट हैं, बट देन नाउ देर आर दीज न्यू फ्यूजन फ्लेवर्स एज वेल फॉर यू। दीज आर न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन। और डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं funpizzakitchen.com। एंड इफ यू वॉन्ट समथिंग फ्री टू गेट एट फन पिज्जा किचन, यू कैन एक्चुअली गेट अ $10 गिफ्ट कार्ड एंड दैट यू कैन यूज देयर। और एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन फ्रिस्को टू कलेक्ट द गिफ्ट कार्ड। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप पार्टिसिपेट करिए। एंड द अदर थिंग इज दैट यू हैव नॉट वन दिस पर्टिकुलर गिव अवे ऑन फनेशिया इन एनी रेडियो शो, क्योंकि अगर आप ये जीत चुके हैं पिछले लास्ट वन मंथ में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और किसी और को मौका देना चाहिए। बट इफ दैट इज नॉट द केस एंड यू हैव नॉट वन येट, देन वेल हियर इज द क्वेश्चन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दिस इज टुडे इज हैंडलूम डे, विच इज नेशनल हैंडलूम डे, August 7th। और कई सारे हमारे लिसनर्स ने साड़ियों की, अपनी फेवरेट साड़ियों की बात करी ऑन एयर। आपने संभलपुरी सुनी और कुछ और लिसनर्स ऑफ एयर में मुझे बताया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि आप मुझे 5 हैंडलूम साड़ीज के नाम बताइए, इंडिया की कोई भी 5। बहुत सारी हैं, हर स्टेट की एटलीस्ट एक है, एक से भी ज्यादा है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। तो लेट्स सी हु कैन कम अप विद 5 हैंडलूम साड़ीज। और इसमें क्रेप या जॉर्जेट या फैंसी साड़ीज नहीं आती है, इसमें एक्चुअली टेक्सटाइल, ये हैंड वोवन टेक्सटाइल, इस तरह की साड़ीज ही आती हैं दैट आर कंसिडर्ड हैंडलूम साड़ीज। 972-355-5555 लाइन्स बचने लगी है फॉर द $10 फन पिज्जा किचन गिफ्ट कार्ड।

थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. और विनर जो है हमारे पंकज साहब हैं, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर. और उनसे मैंने ये भी पूछा, उन्होंने टसर बोला, वन ऑफ द फाइव आंसर्स जो उन्होंने, पांच हैंडलूम सारीज के जो उन्होंने नाम बताए, तो उन्होंने मुझे डिटेल में ये भी बताया कि टसर जो है वो क्यों हैंडलूम होता है और ताना बाना के बारे में. तो उनका टेक्सटाइल का ही काम है, सो ही वॉज वेरी नॉलेजेबल. एंड अगर वक्त होता, बहुत सारी और कॉल्स आ रही थी, नहीं तो मैं आपसे और देर बात करती. पंकज जी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बिकॉज इट्स रियली great when people have this knowledge and they are producing these things. Aur ye kyunki ye hamari sanskriti hai. Aap chahe saadi nahi pehante ho, bahut agar aap women hai aur nahi pehante, gents hai to obviously nahi pehante, lekin I think we all should appreciate. Doesn't matter aap pehante hain personally ya nahi, lekin ye ek badi sachi baat hai ki saadi hamari dharohar hai, hamari sanskriti hai, aur bahut hazaron saal se ye textiles chale aa rahe hain. 100 सालों की बात नहीं कर रही हूं, हजारों साल. अब मैं आपको बताना चाहती हूं मेरा फेवरेट, तो मेरे दो फेवरेट हैं एक तरह से. एक्चुअली चंदेरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और थोड़ा रिसेंटली कह सकते हैं कुछ सालों में मुझे पैठनी बहुत ज्यादा पसंद है. महाराष्ट्र की नहीं हूं मैं, लेकिन हम लोग घूमने के लिए गए थे महाराष्ट्र, शिरडी और वो सब एरिया, एंड वहां पे एक योला एक जगह है जहां पैठनी साड़ी बनती है, एंड आई स्पेशली वेंट देयर ताकि मैं पैठनी साड़ी खरीद कर लाऊं. सो आई लव पैठनी, और बहुत मुझे ग्रेसफुल लगती है, और उसका जो पल्ले का काम होता है बड़ा स्पेशल होता है. क्विकली आई वॉन्ट टू टेल यू ये साड़ियों के नाम. बनारसी साड़ी तो बहुत लोग जानते हैं, चंदेरी, महेश्वरी, पोचमपल्ली तेलंगाना की है, और पोचमपल्ली गांव में हम लोग बहुत जाया करते थे. कांचीपुरम ये भी एक गांव है, गांव तो नहीं है, टाउन है, आई हैव बीन देयर. मदुरई, सालेम, इक्कल, मैसूर साड़ी जो होती है, कोटा, भागलपुरी, और बहुत इस तरह की, संभलपुरी का नाम है, वेंकटगिरी, देर आर सो मेनी. ईच स्टेट हैज प्रोबेबली अ फ्यू मोर, जैसे आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी के साथ साथ मंगलगिरी है. एंड आई फील दैट इट इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल ऑफ अ स्टेट दे कनेक्ट विद उस साड़ी के साथ, और उन्होंने घर में बचपन से या तो दादी मदर को पहने देखा है, फंक्शंस में पहना है, शादी में लोग पहनते हैं. दिस इज सो नॉस्टैल्जिक, दी सारीज, एंड टुडे इज द डे दैट वी सेलिब्रेट हैंडलूम इंडस्ट्री, एंड इट इज नेशनल हैंडलूम डे.

इस गाने को मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, एंड देर इज अ बिग डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज टू. तो कहीं आप इसको ये ना समझ लें कि हम पागल हैं. बट समटाइम्स आई फाइंड दैट वेरी फनी कि जो स्पेशली पागल जो वर्ड है दैट इज यूज सो लूजली. कभी भी स्पेशली हमारे बिकॉज आई ग्रू अप इन दिल्ली राइट, कभी भी कोई डिफरेंट बात करता है या कोई अलग बात करता है तो एक स्टैंडर्ड उसको बोल दिया जाता है, अरे यार पागल है. एंड दैट आई फाइंड नॉस्टैल्जिक एज वेल. ये एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है और नेगेटिव मीनिंग भी है. सो यस, दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि जो भी कोई अगर आपको अपने से अलग लगता है, कोई डिफरेंट लगता है, कोई दूसरी रस्ते पे जा रहा है, जो एक सेट रस्ता है आपको जो लगता है वो सही रस्ता है, उससे अलग जा रहा है, तो वो पागल है. ऐसा समझना ही मुझे लगता है अपने आप में एक पागलपन है. एंड बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वेन एवर आई रिमेंबर दोज डेज जब हम फ्रीली ये वर्ड यूज किया करते थे, ऐसे ही उछाल दिया करते थे बॉल की तरह, ये पागल है, वो पागल है, मैं पागल हूँ, तू पागल है. दैट वाज डेफिनेटली वेरी नॉस्टैल्जिक टाइम. तो कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें शायद नेगेटिव होती हैं या नेगेटिव मीनिंग वाली होती हैं जब आप उनका ध्यान करें, लेकिन स्टिल दे आर कनेक्टेड विद लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज. एंड बचपन की यादें तो हमेशा ही वंडरफुल होती हैं. मेरी दिल्ली की यादें हैं, आपकी शायद कहीं और की होंगी, एंड दैट बाय देमसेल्व्स आर सो ब्यूटिफुल. बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? कितना टाइम आपके डॉक्टर आपके साथ बिताते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन पैशन हेल्थ का ये गोल है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का, दैट एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि ये समझते हैं दैट truly understand your health, it will take time, it does take time, because at Passion Health you are not just a patient, you are family. आपके लिए, आपके परिवार के लिए, and for the health of their this entire community, Passion Health Primary Care is there. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing and more, and they are all available at Passion Health. आप schedule कर सकते हैं अपना appointment, and number आपको बता देती हूँ, 214-666-6259 to book your appointment. Passion Health Primary Care is where your health is your passion.

0: बड़ा बुरा लगता है मुझे पप्पू के लिए बेचारा. मुझे मन करता है मैं ही थोड़े 3-4 स्टेप सिखा दूं. नहीं तो अगर पप्पू यहाँ डालस में होते तो डेफिनेटली इंडियन माइकल जैक्सन का जो भी रिसेंटली फनेशिया ने शो किया है वो जरूर उनको देखना चाहिए था, प्रभु देवा जी का. शायद 2-3 स्टेप सीख लेते और पप्पू डांस कर पाते. वेल आई डू वांट टू टेल यू दैट अगर वो मिस करा तो कोई बात नहीं, फनेशिया आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स लेकर आते रहते हैं एंड विल टॉक अबाउट दैट एज वी मीट. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. आरजे पारो साइनिंग ऑफ.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu

0: डैलस, आर यू रेडी? जाबो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभाल लेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: dance tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: आई एम राहत फतेह अली खान and you are listening Radio Fun Asia.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.

0: 101.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: So, रुको जरा, सबर करो.
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. Stay tuned to Funasia.

0: एक्सपीरियंस, पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
1: How may I help you?
2: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
1: Fear not, we have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी problems solve कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ?
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
7: बेटा, 95% आए?
8: हाँ मम्मी.
7: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
7: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
0: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: कभी सोचा है? हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
2: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
3: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
0: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
9: First 5 customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
8: India Bazaar, the people's store.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा। सुबह के 10 बजे तक हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको बहुत ही बेहतरीन गीतों की ओर। उम्दा गीत, बहुत ही प्यारे संगीत वाले गाने, कुछ बातें करेंगे, गपशप करेंगे, एंड देन वी विल ब्रिंग अ टॉपिक फॉर ओपन डिस्कशन। वी विल हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट अ टॉपिक दैट आई विल इंट्रोड्यूस इन जस्ट अ बिट। पहले ये गीत आप सभी के लिए, क्या बोल लिखे हैं, क्या इमेजिनेशन है, क्या ब्यूटिफुली इस गाने को गाया है। और यू नो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक, मैं जब भी सुनती हूँ बहुत पसंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये पहला ट्रैक आप भी पसंद करेंगे।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता?
1: तबर्रुक मिलता है, मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत।

0: हुमायूं का मकबरा।
1: हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,
0: ना नफा ना नुकसान, ना गुना ना सवाब, बस बेशुमार मोहब्बत। मुझसे शादी कर लो, फिर हर साल अपनी शादी की सालगिरह यही ताज पे बनाएंगे।
1: हर साल ताज?
0: वाकई?
1: तो फिर कबूल।

बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना लिया फिल्म झूम बराबर झूम से, जिसके लिए बोल लिखे गुलजार साहब ने और संगीत तैयार किया शंकर एहसान लॉय ने और फिल्माया गया अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा पर. एंड ऑन टू ए रिक्वेस्टेड सॉन्ग. अर्ली मॉर्निंग उठकर रिक्वेस्ट करते हैं तो भाई पूरी तो करनी पड़ेगी. हियर इज वन.

0: भूमि पेडनेकर और ईशांत खट्टर दिखाई दिए थे इस वेब सीरीज में कॉल्ड द रॉयल्स. आई मीन इट वाज अ क्रेजी पॉपुलर वेब सीरीज. इफ यू हैव एनी थॉट्स अबाउट दैट सीरीज शेयर विद मी एट 972-235-5555. वैसे आपको मैं बताना चाहूंगी, यस आई वुड लाइक टू शेयर दैट दिस पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो यदि अभी अगर आप इंडिविजुअल हैं या हैं स्टार्टअप या कि हैं एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, आप सभी के काम में आएंगे एजी फिनटेक्स, क्योंकि ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स. तो क्या क्या है इसमें उपलब्ध? वेल, ये करते हैं बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन से लेकर प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस. दैट बेसिकली दे कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. और क्या चाहिए भाई? तो कॉल कीजिए इन्हें, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपके. एंड इनका नंबर है 4699429888. दे ट्रस्टेड, दे एफिशिएंट एंड दे कमिटेड टू योर सक्सेस. एजी फिनटेक्स, योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. यू कुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन agfintechs.com टुडे.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM Phoenicia Radio.
0: And for great music, you are tuned into Music Mantra, जिसमें मैं हूँ आपकी संग संगीता. आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक.

अक्षय खन्ना दिखाई दिए थे इस गाने में. अक्षय खन्ना दिखाई दिए थे रिसेंटली इन दी आई गेस दी वेब कोर्ट रूम थ्रिलर जो कि नेटफ्लिक्स पे चल रही है आजकल, कॉल्ड इक्का अलोंगसाइड सनी देओल. वेल एंड टाइम फॉर द नेक्स्ट ट्रैक, ब्यूटीफुल वन.

0: simply amazing. More.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
6: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी। वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
9: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
3: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 11:30 AM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, और इस सेगमेंट में कुछ ऐसी बातें लाई हूं। फॉर एग्जांपल, यू नो, मैं जब रिसर्च कर रही थी इस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने देखी कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि वी आर इन द एरा वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल लेड मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स। काफ़ी सारी फिल्में हैं जो कि फीमेल लेड हैं। हाउ एवर, द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज दैट बॉलीवुड ने विमेन को सिर्फ रोमांटिक या इमोशनल रोल्स में नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके के रोल्स दिए हैं, और उन रोल्स के पे आधारित कुछ फिल्में हैं। जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई थी फिल्म अल्फा, आपको याद हो, इट वॉज रिलीज आई वांट टू से जस्ट लास्ट मंथ, और उसमें दो थी हीरोइने, यानी कि आलिया भट्ट और शर्वरी। सो वील टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। इफ यू हैव समथिंग टू शेयर अबाउट फीमेल लेड फिल्म्स, लेट मी नो एट 972-235-5555। टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, हियर इज अ ट्रैक फीचरिंग हर।

जैसे मैं कह रही थी कि फिल्म आई थी हाल ही में, एक्चुअली जस्ट लास्ट मंथ, अल्फा, इसमें दिखाई नहीं थी आलिया भट्ट और शर्वरी. एंड एज आई मेंशन्ड, द फिल्म इज फीमेल लेड बट नॉट रिवॉल्विंग अराउंड एनी रोमांटिक यू नो आई गेस कैरेक्टर और इमोशनल रोल्स, बल्कि एक फुल ऑन एक्शन यूनिवर्स की सेंटर में रखा है दो ऐसी हीरोइंस को. और दूसरी जो है वो है शर्वरी. शर्वरी जिन्हें इंट्रोड्यूस किया फिल्म में एक्चुअली एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड देन शी वेंट ऑन टू स्टार इन द फिल्म बंटी और बबली 2 इन द ईयर 2021. उसके बाद मुनिया, उसके बाद महाराज, वेदा, मैं वापस आऊंगा जो हाल ही में रिलीज हुई थी, एंड देन द न्यूएस्ट फिल्म अल्फा. अल्फा में दुर्गा कौल का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है. एंड हियर्स अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म, मैसेकर. फिल्म का नाम अल्फा, गाना मैसेकर.

super interesting massacre from the film Alpha, starring Alia Bhatt and Sharvari. And ये जो यशराज फिल्म्स हैं, उनकी स्पाई यूनिवर्स का पहला female-led project hai, and it is an action spy film. So if you're into things like that, then definitely you want to watch the film Alpha. However, we are currently talking about women-led films or female-led projects. So the next one on my list is called Daira. और दायरा में करीना कपूर खान एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, एंड इन्वेस्टिगेटिव इन्होंने कैरेक्टर निभाया है इन दिस थ्रिलर, एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म. आई कैंट वेट टू वॉच इट. करीना एक सीरियस इंटेंस स्टोरी को लीड कर रही है, यानी कि ये फिल्म देखनी तो बनेगी. सो कीप दैट वन ऑन योर लिस्ट फॉर फ्यूचर रिलीजेज. फॉर नाउ गोइंग बैक टू 2004 विथ हर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म एतराज़.

तो जैसे मैं कह रही थी कि श्रद्धा कपूर की एक फिल्म आ रही है ईटा, ईटा में श्रद्धा कपूर एक मराठी फोक आर्टिस्ट विट्ठा भाई नारायण गांवकर का रोल प्ले कर रही हैं। ये उनकी लाइफ और उनकी स्ट्रगल्स की कहानी है, कैसे एक वुमन ने तमाशा और लावणी जैसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में अपनी पहचान बनाई। बेसिकली इट्स अ फिल्म अबाउट अ वुमन हुज लाइफ ही फिल्म की मेन स्टोरी बन गई है। विद दैट, येट अनदर न्यू एंड अपकमिंग आर्टिस्ट अनीत पटा इज ऑल्सो डूइंग ए फीमेल लेड रोल इन द फिल्म शक्ति शालिनी, अनीत पटा ऑफ सैयारा फेम एज यू नो हर।

0: अनीत पड्डा, आई और दिलों पर छा गई विद सैयारा एंड नाउ वी गोना सी हर इन शक्ति शालिनी. और ये है एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसमें अनीत पड्डा का लीड रोल है एंड शी इज अ रिलेटिवली न्यू फेस लाइक वी जस्ट सेड. लेकिन जो पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन की है, हम देखेंगे कि इस मेजर थिएट्रिकल फिल्म का सेंटर बनने के बाद व्हाट इज शी गोइंग टू डू, व्हाट इज हर फ्यूचर गोइंग टू बी लाइक. बट यू नो ऑल्सो इट्स टाइम फॉर मी टू कंक्लूड दिस सेगमेंट बाय सेइंग कि यू नो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स. तो देखिए ना, अल्फा में वुमेन स्पाई थी, दायरा में इन्वेस्टिगेटर, ईथा में आर्टिस्ट और शक्ति शालिनी में हॉरर कॉमेडी की हीरोइन है. कहानियां बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं, जॉनराज भी अलग हैं और एक चीज कॉमन है, लेकिन इस बार बॉलीवुड में कहानी वुमन के अराउंड घूम रही है, लेकिन इट इज नॉट लाइक अ फीमेल सेंट्रिक यू नो फिल्म वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन. But here is a variety that we are now looking forward to. I'm certainly looking forward to the film Daira with Kareena Kapoor Khan. Want to see her as, you know, in that investigative thriller film. That will be super, super interesting. What are you looking forward to? Let me know at 972-235-5555. We'll be back with some more songs and a topic.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
7: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
8: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
9: Guidance ki baat ho to ek hi नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
12: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
10: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर।

एंड वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता, आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक. वेल, बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट सम फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स एंड मूवीज दैट आर कमिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देम. वेल, उसी से जुड़े हुए एक और खबर को आपके साथ शेयर करती हूँ. एंड दैट इज दैट प्रियंका चोपड़ा इज गोइंग टू बी सीन इन ए फिल्म, ए साईफाई थ्रिलर फिल्म कॉल्ड ब्लू फ्लाई. और प्रियंका चोपड़ा के साथ होंगे रसल क्रो. यस, आवर ओन देसी गर्ल विल बी स्टारिंग विथ मिस्टर रसल क्रो इन द थ्रिलर ब्लू फ्लाई. थॉट विल ब्रिंग अ सॉन्ग फीचरिंग हर. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन. बताइए आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, क्या हम ओवर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारी लाइफ को? Are we over-documenting our lives? What do you think? Let me know at 972-235-5555.

ऑलराइट, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, वेल खाना है क्या, है वो इम्पोर्टेंट सवाल, खाना है क्या. वेल इफ यू आर इन अ मूड टू एंजॉय सम कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स और मोर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड दैट वुड मीट मॉडर्न फ्लेयर, देन द नेम टू रिमेंबर इज पेज 3 इटरी एंड दे आर ओपन अंटिल 11 PM एंड दे विल ओपन टूडे एट 11 AM. सो इफ यू आर इन द मूड then you can't wait till aaj ki raat, to aaj ke din jaiye page 3 eatery and you will find vibrant vibes there for brunch or lunch or dinner. And this is a great spot for foodies, for dates and flavor chasers. And for more information, visit page3eatery.com and get all the information and menu questions answered right there. एक और गाना प्रियंका चोपड़ा के नाम क्योंकि आई है फरमाइश और इट हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. लेट्स सी व्हाट दिस इज.

ऑल राइट, तो मैं आपसे पूछ रही थी सवाल, क्या हम ओवर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारी लाइफ को? इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट दैट क्वेश्चन इज, वेल लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग. तो कुछ इस तरह है कि कभी आपने अपने फोन की फोटो गैलरी देखी है और सोचा है, मैंने इतनी सारी तस्वीरें कब ली? पर फिर याद आता है वो दिन डिनर पे गए थे तो बस खाने की ही हमने 15 फोटोज ले ली. वेकेशन पे गए थे सो 400 से अधिक फोटोज आ गए. और उसके पहले हम एक कॉन्सर्ट पे गए थे तो पूरा का पूरा गाना हमने फोन पे रिकॉर्ड किया. और फिर सोच रहे हैं, फनी थिंग, वेल कभी कभी हम इतना रिकॉर्ड करते हैं, बट डू वी इवन गो बैक एंड रीविजिट? लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द क्वेश्चन नाउ. क्या हम अपनी लाइफ को ओवर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? बताइएगा एट 972-235-5555.

0: और बातों में नहीं उलझेंगे जब आप जाएंगे उन डॉक्टर से मिलने एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि वो आपके साथ वक्त बिताएंगे, काफी टाइम बिताएंगे और समझ पाएंगे आपकी हेल्थ को. सो रिमेंबर दैट एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर द जेनरस 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. एंड ऑल्सो ये मानते हैं कि बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, रिमेंबर द नेम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज 30 मिनट्स, दैट इज ऑल दैट इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल. और फिर एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और काफी और ऐसी टेस्ट उपलब्ध हैं पैशन हेल्थ पर. सो व्हाई वेट, स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे. इन्हें कॉल कीजिएगा एट 214-666-6259. अपॉइंटमेंट बनाइएगा. यू वांट टू गो आउट देयर एंड गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड एंड वेरी पेशेंटली दे विल आंसर योर क्वेश्चंस. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आवर passion.
1: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
0: Continuing on with the topic that are we over documenting our life? Well, think about it. Think about your childhood. या आपको ये याद हो कि हमारे पेरेंट्स के पास बचपन में बचपन की छोटी सी एल्बम होगी कहीं, जिसमें कुछ 20-25 तस्वीरें होंगी और हर फोटो में एक कहानी होगी. और हमारे बच्चों के पास, वेल, उनके फोन्स पे तकरीबन 10-12 हज़ार तस्वीरें होंगी. और फिर फोन बोलता है स्टोरेज इज फुल. गोरी गोरी

0: तो ये टॉपिक पर आधारित एक और क्वेश्चन है. टॉपिक इज डू वी ओवर डॉक्यूमेंट आवर लाइफ एंड ऑन दैट डू यू थिंक वी समटाइम्स रियली चूज व्हाट टू डू बेस्ड ऑन हाउ गुड इट विल लुक ऑन सोशल मीडिया or by sharing via phones or, you know, so if you think so, let me know. 972-235-5555 is the number to the studio.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Footwork, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Footwork.
8: First five customers shopping for $150 gets a free 10 gram silver coin.
7: India Bazaar, the people's store.
9: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
10: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
8: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
8: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
15: ये तारा वो तारा हर तारा.
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है.
16: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
16: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
0: एंड अ वार्म वेलकम बैक टू म्यूजिक मंत्र दोस्तों, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। वी आर द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस मॉर्निंग्स म्यूजिक मंत्र। और आज हम टॉपिक राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर वी ओवर डॉक्यूमेंटिंग आवर लाइफ, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तस्वीरें ले रहे हैं। लेट मी नो योर थॉट्स एट 972-235-5555। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो आजकल तो भाई सर्वर्स भी थोड़ी देर के बाद आते हैं। पहले वो बोलते हैं कि ये बैठेंगे, दे विल फिगर आउट वेयर टू सिट, हाउ टू अरेंज देमसेल्व्स एंड टेक अ पिक्चर टुगेदर फॉर सद ग्रुप देन इंडिविजुअली। फिर आकर पूछते हैं क्या लेंगे आप खाने में, फिर खाना आता है, उसके बाद बिफोर दे कम बैक टू चेक हाउ द फूड इज एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, दे वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स बिकॉज यू नो, क्योंकि अब बारी आई है तस्वीर लेने की उस डिश की जो कि आप डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट? एंड दैट हैपेंस इन सेवरल प्लेसेस एट सेवरल टाइम्स विद सेवरल एक्सपीरियंसेस दैट समटाइम्स वी इवन फॉरगेट टू फुल्ली कैप्चर। यू हैव समथिंग टू शेयर अबाउट दिस, लेट मी नो। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट 972-235-5555।

फैंटास्टिक ट्रैक दैट वाज. और यहां से आपको ले चलती हूँ एक और बहुत ही फन फिल ट्रैक के पास. एंड दैट सॉन्ग हैज टू डू वेरी वेल विथ व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे. और गाने के बोल हैं सेल्फी ले ले रे. विद दैट सेड, सेल्फी लेने हैं आपको तो बहुत सारी जगहें हैं वैसे. व्हेन यू गो आउट टू फन पिज़्ज़ा किचन, सो ध्यान से सुनेगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय योरसेल्फ बिकॉज यू गोइंग टू गो आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, यू गोइंग टू टेक पिक्चर्स, यू टेक सेल्फीज एंड व्हाट नॉट, राइट. वेल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू विल बी देयर ऑल्सो टू एंजॉय डिलिशियस फेवरेट्स सच एज अ टैंगी अचारी पनीर पिज़्ज़ा or the smoky tandoori chicken pizza, or you will enjoy some of their breads. They have salads. Actually, they have a lot of stuff on the menu, but I think the highlight is on the pizzas at, as the name says, Fun Pizza Kitchen. Want to tell you that for more information and details about their menu, the hours, their locations, visit funpizzakitchen.com. Right now, though, I'm going to put your name as a chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen if you answer this super simple question. Ye gaane mein main character kaun hai? Unka naam mujhe batayenge aap. And you will give me a call at 972-235-5555. I will enter your name for a drawing of for a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. 972-235-5555. Who is the main lead actor in this one? Let me know. It's a fun song, keeping up with the mood.

0: खींच मेरी फोटो नहीं फोटोआ फोटोज अ लॉट ऑफ फोटोज जब आप जाएंगे टू सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT इंडिया बाजार 2026 जो कि हो रहा है 15 अगस्त को. इट्स अ सैटरडे. दोपहर के 2 बजे से लेकर शुरुआत हो जाएंगी सेलिब्रेशंस और ये हो रही हैं एट द कॉमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. और पता है क्या आप सोच रहे हैं भाई अगस्त के महीने में सेलिब्रेशंस रख रहे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, नॉट द थिंग. वेल वांट टू टेल यू इट इज कम्प्लीटली इंडोर्स एंड कम्प्लीटली यानी कि द परफॉर्मेंसेज, देयर विल बी म्यूजिक, देयर विल बी शॉपिंग, अ ग्रैंड परेड, ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑसम इंडियन फूड एंड देयर विल बी एन इनक्रेडिबल ड्रोन शो एंड आई एम श्योर दिस विल बी आउटसाइड फायरवर्क्स फिनाले. Also want to add that this fantastic celebration is absolutely and completely, totally, fully free for everybody. So bring your family, bring your friends and be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration, which is IANT India Bazaar 2026.
1: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Funisia Radio.
0: 104.9 FM. So, bhai, so what is it that we need to do, right? Because really, when you add the word over to the words over documenting your life, you know, a little too much of anything is not that good. So we're talking about documenting every move pretty much that we make, anywhere we go, anybody we are with. Chahe wo badi si badi vacations ho, jin ke liye humne hazaron mein kharch kiye ho, but wahan par jaakar agar hum bas photo shoot ki ya, you know, ke style mein hi kuch sab kuch karte hain, you know, or it's simply going to go shopping or going for dinner jahan par server ab jante hain, तैयार हो जाइए बिकॉज द पेट्रन्स आर गोइंग टू आस्क फॉर पिक्चर्स, नॉट वन, नॉट टू, मल्टीपल्स ऑफ देम और एनीवेयर एल्स. ऑनेस्टली, यू नो, इवन ऑन द डाइनिंग टेबल दैट वी आर सिटिंग एट होम एज अ फैमिली, तब भी तस्वीरें लेते हैं. दैट्स नॉट दैट ग्रेट. सो व्हाट डू वी डू? एनी आइडियाज, एनी थॉट्स, लेट मी नो एट 972-235-5555.
2: Baby, when I look into your eyes, I can see the stars shining so bright, so bright, so bright, so bright.
3: Let me hear you say.

सो क्लोजिंग थॉट में मेरे ख्याल से ये बात जरूरी है समझना कि फोन साइड में रख के कुछ ना करना, नॉट इंटरैक्टिंग इज नॉट द आंसर. नहीं, फोटोज लीजिए, वीडियोज बनाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें स्माइल करवाएंगी लेटर. प्रॉब्लम बस यही है कि जब हम हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं और उन मोमेंट्स को कैप्चर करते करते उस मोमेंट का एक्सपीरियंस हम खो रहे हैं. वेल, ट्राइंग टू बैलेंस इट ऑल सो दैट यू डू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू सी द पिक्चर्स लेटर वर्सेस मेकिंग अ फ्राउन दैट यू कुडंट एक्सपीरियंस द मोमेंट देन. Right? Think about it. I'm still here in the studio. Anything you want to add to that, let me know. I want to say a big thank you to everybody who called in and participated in this show today. Your responses made a big part of my show today. On that note, कहती हूँ कि ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फनीशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जहाँ ले चलती हूँ आपको ऐसी एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो हम जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, यानी कि वो आपकी बकेट लिस्ट में होती है, और अगर ना हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो जगह आपकी बकेट लिस्ट में आ जाए। सुबह आज हम एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों की बात करेंगे, क्योंकि आज और अगले सैटरडे होगा इंडियाज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। जी हाँ, 15 अगस्त इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, एंड सो आई थॉट व्हाई नॉट सेलिब्रेट इंडिया टुडे, दैट इज सैटरडे एंड द नेक्स्ट सैटरडे, हाउ अबाउट दैट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस इन इंडिया। सो इट नीड्स टाइम, इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू बी कवर्ड, राइट। सो अगर आप इंडिया से हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें कोई जगह के बारे में बताना चाहें तो ज़रूर कॉल करिए। द नंबर इज 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे, एंड इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग हाउ शी वाज टॉकिंग अबाउट कि फ़ोन को अपने लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें, एंड यू नो सो दैट देर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस कि आप सचमुच अपने आसपास के लोगों से भी बात कर रहे हैं और फ़ोन पर अपने जो दूर बैठे यार हैं, रिश्तेदार हैं या कोई काम है वो भी मैनेज कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, सो गुड जॉब संगीता, फैबुलस शो। कमिंग बैक टू जस्ट चिल, मैं देती हूँ आपका साथ सैटरडे एंड संडे 10 AM to noon। स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555, एंड एज आई सेड टुडे एंड द नेक्स्ट सैटरडे विल बी इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑन माई शो जस्ट चिल।

Well, that was taken from the movie Dil Se, and बिल्कुल जो हमारे लिसनर ने बताया एलेपी के बारे में, दैट्स केरला. बहुत ही खूबसूरत जगह है. इट्स एक्चुअली कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट. यू नो, एलेपी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल नेटवर्क ऑफ कनाल्स, लगून्स, लेक्स एंड बैक वाटर्स. एंड एज ही मैंशन, यू कैन एक्चुअली स्लीप ऑन द बैक वाटर्स. यू नो, तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है. पता है, वहाँ पे दिस फार्मिंग बिलो सी लेवल. यू नो, एंड और भी मज़े की बात है कि वहाँ की फेमस स्नेक बोट्स, वेल डोंट वरी, दे आर नॉट फिल्ड विद स्नेक्स. दे आर इंक्रेडिबली लॉन्ग ट्रेडिशनल रेसिंग बोट्स कॉल्ड चुंदन वलम्स, नेम्ड फॉर देयर डिस्टिंक्टिव शेप. यू नो, तो ये बड़ी अच्छी सी एक रेस होती है. यू नो, एलेपी होस्ट वन ऑफ केरलाज मोस्ट फेमस बोट रेसेस, एंड द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस टेक्स प्लेस ऑन पुन्नमडा लेक एंड फीचर्स ह्यूज टीम्स रोइंग स्नेक बोट्स इन रिदम. तो यहाँ पर जो सीनरी है, इट फील्स लाइक अ मूवी सेट. यू नो, नैरो कनाल्स इमेजिन करें, वुडन बोट्स हों, कोकोनट पाम्स हैं, पैडी फील्ड्स एंड वाटर साइड होम्स मेक इवन एन ऑर्डिनरी बोट राइड इनक्रेडिबली पिक्चरेस्क. तो आप अगर फोटो लेने का शौक रखते हैं, जो कि अक्सर कई लोग रखते हैं, सो दिस इज़ वन प्लेस यू शुड डेफिनेटली विजिट. इट्स इन केरला.

टेकन फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है, दैट वॉज प्यार की कश्ती में. वेल, आज हमारी कश्ती में यानी कि जस्ट चिल के आज के शो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस. जी हाँ, अगले शनिवार 15 अगस्त इज इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे. एंड मैंने सोचा कि आज और अगले सैटरडे लेट्स सेलिब्रेट इंडिया. सो हम बातें कर रहे हैं इंडिया की. तो आपको बताऊं दैट इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ईच विद इट्स ओन फूड, क्लोदिंग, ट्रेडिशंस, म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट रिकॉग्नाइजेस 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, वाइल हंड्रेड्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड वराइटीज आर स्पोकन अक्रॉस द कंट्री. सो बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन जो है सब कुछ इंडिया की है. एंड दैट्स द ब्यूटी कि एक कंट्री लेकिन लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पीकिंग अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल यू नो थीम.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
11: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM only on Phanasia Radio.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

0: Well, you are tuned in to 104.9 FM Funasia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर यू नो डूइंग द countdown to India's 80th इंडिपेंडेंस डे. सो आज और अगले शनिवार होगा India's इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑन Just Chill. तो आपको आगे कुछ बताऊं उसके पहले बताना चाहूंगी दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. तो अगर आपको टैक्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, हेल्प चाहिए, देन एजी फिनटेक्स इज वेयर यू नीड टू गो. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, इनकी टीम बहुत ही एफिशिएंट है एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintechs.com. कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंडिया की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं, कुछ अनोखी, अनसुनी, अच्छी अच्छी बातें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर इज 9722355555. जैसे कि मैं आपको बताऊं, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो was developed in India. जी हाँ, Indian mathematicians made enormously important contributions to the way zero is used in mathematics, right? तो ये जो zero है, ये India ने ही दिया था.
1: करते हैं सब मुझे सलाम.

वेल, ये बात तो हुई जीरो की. वेल, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी राम लखन. एंड अगला फैक्ट बताऊं उसके पहले, कहते हैं ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ बतानी चाहिए. भाई, हम यहाँ हैं ही आपको एंटरटेन करने के लिए एंड टू प्रोवाइड यू सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी यू डू गेट इन्वॉल्व इन कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. देन आपको रखना है एक नाम याद, एंड दैट इज़ अटर्नी ओमार ख्वाजा, क्योंकि ये ना केवल आपका केस लड़ेंगे बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे. सो देयर इज़ नो स्ट्रेस. आपके पास अपना खुद का ही स्ट्रेस इनफ है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, यू नो यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम इट, रिकवर फ्रॉम इट. तो ओमार ख्वाजा जो है अटर्नी, वो आपका केस लड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे. एंड जब तक आप केस जीत नहीं जाते, सो यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com. दैट्स attorneyomar.com. अच्छा, जीरो का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था. अब मैं आपको बताती हूँ कि यू नो इंडिया जो है, इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क्स. एंड यस, देयर इज इवन अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन डल लेक इन श्रीनगर. तो सोचें कि एक पोस्ट ऑफिस जो कि फ्लोट कर रहा है. हाउ कूल इज दैट? सो यस, इंडिया has one of the world's largest postal networks. Last बताएं, आपने किसी को चिट्ठी कब लिखी थी?

चिट्ठी आई है टेकन फ्रॉम द मूवी नाम, एंड बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। आई नो कुछ लोगों को आंसू आ गए होंगे, भाई आंसू पहुंच लीजिए। एंड मैं आपको ज्वेलरी के बारे में बताती हूँ तो थोड़ा खुश हो जाइए। अब इंडिया की अगर बात कर ही रहे हैं राइट, तो इफ़ यू वुड से कि कोई एक स्टेट विच इज़ मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डायमंड्स एंड फाइन ज्वेलरी, सो दैट वुड बी गुजरात, यू नो, बिकॉज ऑफ सूरत, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर्स जो हैं वो सूरत में है। लेकिन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। जैसा कि गुजरात मैंने कहा डायमंड्स, स्पेशली सूरत फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। गुजरात ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रांग ट्रेडिशनल ज्वेलरी हेरिटेज। फिर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, सो इट्स नोन फॉर एलैबोरेट गोल्ड एंड टेम्पल ज्वेलरी, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी होती है, स्पेशली यू नो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्राइडल पीसेज जो होते हैं कमाल के होते हैं। Then if we come to Kerala, they are famous for its love of gold jewelry, you know, particularly elaborate gold worn at weddings and festivals. फिर अगर तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद जो है is famous for pearls, मोती जो हैदराबाद में मिलते हैं amazing होते हैं, and that's why हैदराबाद का nickname city of pearls भी है। And then if we come to Rajasthan, well famous for कुंदन, पोलकी, मीनाकारी, जड़ाऊ, एंड जड़ाऊ इज़ माई फेवरेट, जड़ाऊ एंड पर्ल्स आर माई फेवरेट, एंड यू नो दोज एलैबोरेट रॉयल स्टाइल ज्वेलरी, देन दैट्स राजस्थान। जयपुर इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर जेम स्टोन्स एंड ज्वेलरी। और अब जब इतनी ज्वेलरी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो श्री कृष्णा ज्वेलर्स, यू नो ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ऑफ एलिगेंस एंड ऑफ टाइमलेस ब्यूटी। तो चाहे आपको क्लासिक गोल्ड डिजाइंस चाहिए या स्पार्कलिंग डायमंड्स चाहिए या फिर कुछ इंट्रिकेट कुंदन या स्टनिंग पोल की कलेक्शंस चाहिए आपको, जहाँ श्री कृष्णा ज्वेलर्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ्स स्पेशल मोमेंट्स। दे आर नाउ एट अ न्यू लोकेशन, 13145 Suite 220 Main Street Frisco। जी हाँ, श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश्ड मेमोरीज सिंस 1967।

Well, you are tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको तारा कमर्शियल एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमारे एनर्जी बिल्स एकदम आसमान छू रहे हैं. तो स्पेशली दिस इज़ फॉर यू नो बिजनेस ओनर्स, यू नो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. They have been proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates. इनकी बहुत reliable service है and they can customize energy plans, you know. तो आप तारा energy को call करें. The number is 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. That's taraenergy.com.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 4837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
6: तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances,

Hey, this is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल ओनली ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio. We are celebrating India's Independence Day आज और अगले शनिवार. एंड अगले शनिवार एक बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है. जी हाँ, आई वॉन्ट टू लेट यू नो ऑल अबाउट इट. दिस इज IANT सेलिब्रेटिंग इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे August 15th from 2 p.m. onwards at the Comerica Center Frisco. The best part, ये indoors है तो आप गर्मी से बचे रहेंगे and it's free for everyone. Enjoy authentic Indian food, यानी कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी family को ला सकते हैं and enjoy some authentic Indian food. साथ ही साथ you'll witness a grand parade, cultural performances होंगी, live music होगी, shopping कर सकते हैं and there's going to be an incredible drone show and fireworks finale. So bring your family, bring your friends and be part of North Texas biggest Indian Independence Day celebration. जी हाँ, IANT आनंद बाजार 2026 next Saturday from 2 p.m. onwards. भूलिएगा नहीं, because it's gonna be so much fun and such a proud feeling, right? Celebrating India's 80th Independence Day.

That was a pinga taken from Bajirao Mastani. Niranjan ji ने बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई, एंड दैट इज़ सो ट्रू कि जो साड़ी के पहनने के तरीके हैं ना, वो इतने सारे हैं. इनफैक्ट मैंने अभी गूगल किया एंड पता चला कि करीब 108 डिफरेंट वेज देर आर टू वेयर अ साड़ी. हाउ कूल इज़ दैट? एंड अनदर कूल थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज़ अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. वाई इज़ इट कूल? बिकॉज ये आपको 5 या 10 मिनट का अपॉइंटमेंट नहीं, पूरे 30 मिनट्स की विंडो देते हैं. बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम, राइट? आपकी सब बातें ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन देना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, यू नो, बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. सो यू नो, 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, चाहे फिर वो एनजाइटी केयर हो, फाइब्रोस्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, या वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग हो, या फिर यू नो देर आर सो मेनी मोर थिंग्स अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो डू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टूडे. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट. जी हाँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. एंड कमिंग बैक टू साड़ीज, सो ट्रू कि इतने तरह तरह की साड़ियाँ इंडिया में बनती हैं. They are very famous and there are about 108 ways, different ways to wear this beautiful saree.

0: fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Ek aur laddu le lo.
4: Thodi aur biryani.
3: Are America jaake thodi milega.
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन प्राइमरी
7: केयर। क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
14: First five customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
13: India Bazaar, the people's store.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
19: The Dill of Dallas. Heart to heart.

सच बात है, रेल में बैठने का एक अलग ही मजा है. एंड यस, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियाज रेलवे सिस्टम इज इनॉर्मस एंड कनेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम ह्यूज मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू स्मॉल टाउन्स अक्रॉस द नेशन. यस, दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, एज द नेम सजेस्ट, जस्ट chill. Well, we are celebrating India's 80th Independence Day, rather the countdown to India's Independence Day. So, aaj and agle shanivar, we will be talking and celebrating about India. So, India ki aur baatein bataungi, lekin pehle aa raha hai aapke liye ek giveaway, and that giveaway is from San Idli Restaurant. Ji haan, here's your chance to win any dosa of your choice, plus one filter coffee at San's Idli Vegetarian Restaurant and Indian Food, jahan milega aapko 100% pure vegetarian, made with fresh, authentic flavors. क्रिस्पी डोसाज हों, फ्लफी इडलीज खाने का मन है, या कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, एंड साथ ही साथ शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी भी आपको सैंस इडली रेस्टोरेंट में मिलेगी. सो फैमिली डिनर्स हों या केटरिंग सर्विसेज, विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन, विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट. दिस इज़ एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन के इंटरसेक्शन पर. सो सवाल आपके लिए ये है कि क्योंकि आज हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि आपको मुझे कॉल करके बताने हैं कोई भी इंडिया के चार फेमस मॉन्यूमेंट्स. टेल मी एनी फोर फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. यू कैन कॉल, द नंबर इज 972-235-5555, एंड टेल मी फोर फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, एंड यू कैन विन दिस गिव अवे विच इज़ अ डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी, एंड आई विल बी चूजिंग टू विनर्स. सो कमिंग बैक टू ट्रेन्स, रेलवेज, जी हाँ, इंडिया की जो रेलवे सिस्टम है इज इनॉर्मस एंड इट कनेक्ट्स एवरीथिंग from huge metropolitan cities to small towns across the nation.

0: ऑलराइट, मैंने पूछा था आपसे सवाल कि मुझे कॉल करके बताएं कोई भी चार फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hey, hello, hello. Nice to meet you, everyone.
0: यस, हाय, एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Anmol.
0: ऑलराइट अनमोल, तो बताइए कि कौन से चार फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप बताने वाली हैं?
1: Yes, so ताजमहल, कुतुब मीनार,
0: ओके,
1: रेड फोर्ट और गोल गुंबद.
0: क्या बात है, ऑसम. एंड हैव यू बीन टू ऑल दीज फोर मॉन्यूमेंट्स?
1: सो नॉट ताजमहल, बट आई बीन टू ऑल द अदर थ्री.
0: ऑसम. तो कुतुब मीनार में जाकर आपने वो जो एक आयरन पिलर है उसमें वो ट्राई किया कि उसको पीछे से पकड़ के कैन यू होल्ड ऑन टू इट?
1: आई थिंक मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये सब किया था.
0: ओ, अच्छा अच्छा अच्छा बट या डेफिनेटली. सो यू नो अनमोल, अगर आप नहीं गए हैं अभी तक ताजमहल, तो आई हाईली रिकमेंड कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट इंडिया यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. यू नो इट्स रियली रियली मेजेस्टिक. सो थैंक यू अनमोल, जीत लिया आपने सैन इडली रेस्टोरेंट का ये डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग जिसमें कुतुब मीनार वीडियो में दिखी है. ओके, सो
1: Awesome,
0: हाँ,
1: sounds good.
0: ऑलराइट.

0: यहाँ अच्छा होता कि मैं एक साथ कई सारी कॉल्स ले पाती. बहुत सी कॉल्स आ रही हैं बट मैं एट अ टाइम एक ही कॉल ले सकती हूँ. एंड वी डू हैव अनदर लिसनर ऑन एयर विद अस हु विल बी शेयरिंग सम फोर फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, my name is Vivek.
0: हाय विवेक, हाउ आर यू?
1: I'm doing good.
0: ऑसम.
1: And your three are the most famous in northern India: Taj Mahal from Agra, Red Fort from Delhi, Qutub Minar from Delhi, and then Gateway of India from Mumbai.
0: क्या बात है. सो आर यू फ्रॉम दिल्ली बाय एनी चांस?
1: आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ इन दिल्ली, बट यू से देयर इज अ सिटी मेरठ,
0: अच्छा
1: जहाँ
0: हाँ,
1: से संग्राम
0: राइट राइट
1: जहाँ से
0: राइट,
1: संग्राम
0: शुरू
1: शुरू
0: हुआ था.
1: हुआ.
0: यस यस, ऑसम ऑसम. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया आपने ये सैनेडली रेस्टोरेंट की तरफ से गिव अवे. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. ओके, सो आप होल्ड करना. ऑसम. एंड यस, आपको मैं, रक्षाबंधन भी आ रहा है तो उसके बारे में भी बताना चाहूँगी. एज दिस रक्षाबंधन, फनेशिया रेडियो एंड चौकटाव कैसीनो रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट में जो है, वॉन्ट्स टू हेयर योर मोस्ट अनफॉर्गेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. तो आपको करना ये है दैट यू हैव टू सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 2148377147, एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेज इंक्लूडिंग यू नो डाइनिंग एक्सपीरियंसेज, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज. एंड साथ ही साथ एक ग्रैंड प्राइज है विच इज़ एन अनफॉर्गेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रेस्टोरेंट, सॉरी रिजॉर्ट एट ड्यूरॉन्ट. तो आप अगर और डिटेल्स चाहिए कॉन्टेस्ट की, देन चेक आउट फनेशिया रेडियो सोशल मीडिया पेजेस, यू नो चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरॉन्ट, वेयर अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. प्लीज डू प्ले रिस्पॉन्सिबली वेन यू गो देयर. एंड यस, बात यह है कि आपको कुछ मज़ेदार अपनी यादें, कुछ किस्से शेयर करने हैं इन अ 1 मिनट वॉइस नोट. होता है ना भाई बहन में छेड़छाड़, तंग करना एक दूसरे को, एंड फिर बड़े होके बात याद करना. जैसे कि यू नो कभी जब शादी की बात चलती है तो भाई छेड़ेगा कि भाई आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो किस तरह का है. मतलब कुछ भी छेड़छाड़, कुछ भी नॉटी, कुछ भी मेमोरेबल ऐसी बातें ज़रूर करिएगा शेयर. एंड देन यू माइट बी द ग्रैंड प्राइज विनर, राइट? सो रिमेंबर द नंबर इज़ 2148377147. जस्ट लीव अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप.

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी शहनशाह. एंड जी हाँ, आप भी बिल्कुल शहनशाह से रहें और परेशान ना हो. अगर आपको कोई फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, यू नो, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो कहीं भी आप इधर उधर ना देखें. आई वुड से यू शुड गो टू माई टाइम इक्विटी. जी हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, देन माई टाइम इक्विटी विच इज़ लेड बाय CPA सुधीर पाए, ये ऑफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल इस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. तो आप विजिट करें mytimeequity.com और यू कैन कॉल 4697021272 एज दे विल इंश्योर कि आप गलती से भी कोई मिस्टेक ना करें.

Well, it's always, always fun talking to you all and listening to some melodious songs along the way. मजा आया आपके साथ इंडिया के बारे में कुछ बताने का, you know, celebrate करने का. And we will continue this celebration next Saturday as well as we will be celebrating India's 80th Independence Day on 15th of August 2026. Well, मैं मिलूंगी अब आपको कल सुबह 10 बजे in Just Chill, जहां करेंगे हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आप कहीं जाइएगा नहीं. Do stay tuned into 104.9 FM, Fun Asia Radio, as यहाँ हमारे shows आपको entertain करते रहेंगे. Coming up next is Neelam. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 बजे. Well, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. This is Madhulika signing off.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

दिस इज KCMB 104.9 FM Fun Asia रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी दोस्तों, मैं रहती हूँ आपके साथ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM एंड ऑन संडे टिल 2 PM। सुना आपने मधुलिका को टिल नून और अब आपका और हमारा साथ टिल 3, जहाँ पर 2 बजे तक कुछ बॉलीवुड में थीम बेस्ड गाने, कुछ बातें बॉलीवुड की करते हैं। राइट आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी, जी हाँ, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी योर होस्ट नीलम। आज का जो विषय है, आप जानते हैं कि हर शनिवार हम एक अलग विषय लाते हैं आपके लिए, अलग एक प्रस्तुति होती है जहां पर कभी कभार किसी शब्दक की बातें होती है, कभी कभार किसी कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी हम आपके लिए कुछ एक ही फिल्मों की बातें लाते हैं, एक ही विषय की बातें, एंड देन देर आर ऑफकोर्स मैनी मैनी मोर डिफरेंट टॉपिक्स। आज है फिल्मी कहानी का विषय, जहाँ पर मिले जुले गाने नगमे आप सुनेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं आपको कहानियाँ सुनवाऊंगी। उस कहानी से आप मुझे बताते हैं फिल्म का नाम, ठीक है? लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सुनेंगे कुछ मिले जुले गाने, नगमे तराने, और बीच में होगी कुछ कहानियाँ आपके लिए, लेकिन बहुत ही फिल्मी कहानी तो होती है, लेकिन फिल्मी, बिल्कुल फिल्मी। और 104.9 FM।

सलमान खान के इतने सारे फैंस है डालस में कि उनका जन्मदिन नहीं है आज भाई, नो इट्स नॉट हिज बर्थडे, लेकिन जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड माई शो दिस सेगमेंट विथ हिज सॉन्ग, मुझे इतने सारे कॉल्स आए सलमान खान की, जो बड़ी बड़ी फैंस है हमारी डालस में उनकी। ब्लैक एंड ब्लैक, जी हाँ, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ब्लैक एंड ब्लैक में वो नजर आए थे इस गाने में, एंड वेरी क्यूट सलमान खान, राइट, इन दोज डेज 89-90 से उनकी जब शुरुआत हुई थी इन द बॉलीवुड, तो बहुत सी क्यूट एंड आई वुडंट से चॉकलेटी बॉय, यस चॉकलेटी बॉय, राइट, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्म्स नहीं की थी इन दोज डेज, बाद में वो दबंग बने, बाद में ही बिकेम दैट एक था टाइगर एंड वॉट नॉट, लेकिन तब तक तो वो बिल्कुल आउट एंड आउट रोमांटिक हीरो रहे। तो आज का टॉपिक ये है कि हम आपके लिए कुछ मिले जुले गाने लाएंगे, एंड एज ऑलवेज जो भी विषय होगा, जो भी टॉपिक है, लेकिन गाने होंगे कुछ ऐसे ताकि आपकी जो आफ्टरनून है, आप गाड़ी में होंगे, घर में ग्रोसरीज क्लीनिंग कर रहे होंगे, लॉन्ड्री की लिस्ट लंबी होगी, कहाँ पर भी जहाँ पर भी आप हैं, आपकी म्यूजिकल हम बना देंगे पूरी आफ्टरनून, यह है मेरा वादा। 1991 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सनम बेवफा से सुना आपने वो गीत, जो एक्चुअली एक पाकिस्तानी फिल्म की रिमेक थी, जी हाँ, जिसका नाम था हक मेहर। हक मेहर की ये रिमेक थी, एंड इन 91 बाय दैट टाइम इन अबाउट 2 or 3 years सलमान खान बन चुके थे, नॉट कम्प्लीटली लाइक नंबर वन, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे हज़ारों लाखों फैन फॉलोअर्स हो गए थे, और इसीलिए जब इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, एक न्यूज़पेपर में उसकी एड आई थी, एंड आई रिमेंबर दिस बिकॉज आई वॉज इन इंडिया इन 90s, आई वॉज स्टिल इन स्कूल, तो जहाँ पर लिखा गया था न्यूज़पेपर, मीनिंग द फिल्मी न्यूज़पेपर, नॉट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई डोंट नो इफ इट कुड बी टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, बट एनी वे, सो जहाँ पर लिखा गया था कि अगर आप सलमान खान की हीरोइन बनना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू अप्लाई हियर, एंड आई एम लाइक वाओ। तो ये एक ऐसी सनसनीखेज खबर थी कि जहाँ पर हज़ारों लोगों ने आई एम श्योर की होगी ऑडिशन, और आखिरकार चांदनी नाम की एक जो लड़की थी अभिनेत्री, उन्हें ये फिल्म मिली, एंड आई बिलीव इट वॉज द वन एंड ओनली फिल्म, एक ही फिल्म थी जो उन्होंने की, लेकिन खैर वो कर ली उन्होंने सलमान खान के साथ। आज कुछ सुनेंगे आप मिले जुले गाने, कुछ फिल्मी बातें, इस पर्दे के पीछे की बातें, लेकिन उसके साथ होगी फिल्मी कहानी। चलिए एक और दो गाने सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लाऊंगी मेरी पहली कहानी, जिसको सुनकर आपको मुझे बताना होगा फिल्म का नाम, लेकिन पहले कुछ गाने।

0: बातों से बातें निकलती रहे जी, बिल्कुल हमारी भी कुछ ऐसी ही बातें होती है, बातों से बातें निकलती है एवरी सैटरडे ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, मेरे यानी कि नीलम के साथ, और मैं हूँ आपके साथ टिल 3 PM ऑन सैटरडेज एंड संडेज टिल 2 PM। तो चलिए, अब जो बातें होने वाली है वो है कहानी की। मैं आपको एक कहानी सुनवाने जा रही हूँ और इस कहानी से आप मुझे फिल्म का नाम बताएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही खूबसूरत और चुलबुली लड़की है काजल, जो एक बहुत ही मशहूर सिंगर रवि की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ये जो प्यार है वो जल्दी रंग रंग ला जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में बंधकर शादी में बन जाते हैं। लेकिन उनकी खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती, उनकी खुशियों को कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है और रवि को एक खौफनाक साजिश में अपनी जान गंवानी होती है। एटलीस्ट सब लोग ये मान लेते हैं। इस हादसे के सदमे में जो काजल टूट जाती है और इसीलिए वो दूसरे शहर चली जाती है। वहाँ उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है एक बेपरवाह लड़के राजा की। राजा अब जो काजल से प्यार करने लगता है, उसके गमगीन चेहरे के पीछे छिपी सादगी पे बस उनका तो दिल आ जाता है और उन्हीं के प्यार में पूरी तरह से वो दीवाना हो जाता है। काजल पहले तो नाना करती है, लेकिन वो भी अपने इस आशिक के प्यार पे आखिरकार हार मान ही लेती है और राजे से शादी कर देती है। ट्विस्ट कहानी में अब आता है जब एक दिन काजल के सामने अचानक ही उनका पहला पति रवि जिंदा लौट आता है। अब काजल के सामने एक तरफ है उनका पहला प्यार, उनका पहला पति, दूसरी तरफ है उनको जीने की वजह देने वाला उनका दूसरा पति राजा। तो कौन सी है ये कहानी और काजल किनको चुनेगी? अगर आपने ये कहानी देखी है, ये फिल्म देखी है, तो आपको नाम और किरदार से बिल्कुल पता होगा। बताइएगा मुझे ऑन 104.9 एफएम फनीशा, यू एंड लाइव ऑन एयर। हेलो
1: हेलो,
0: यस
1: यस, हेलो,
0: यस यस।
1: द मूवी नेम इज दीवाना।
0: आई हाय दीवाना, आपको कैसी लगी थी ये फिल्म, आपने देखी है?
1: बहुत बार काफी।
0: तो शाहरुख खान के लिए देखी, दिव्या भारती के लिए या ऋषि कपूर के लिए?
1: ऐसे कुछ नहीं, बट द स्टोरी वाज वेरी नाइस,
0: स्टोरी वाज गुड, राइट राइट,
1: या एंड दैट टू, दैट सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग,
0: यस सॉन्ग्स वर, नदीम श्रवण साहब ने क्या कमाल किया था, थैंक यू सो मच। मैम, मैंने आपका नाम नहीं कहा आपने मुझे,
1: शहताज,
0: थैंक यू सो मच। तो बातें हो रही है फिल्मी कहानी की, अगर आप ये कहानी के लिए कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल बताइएगा। एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो, यस मैम, बताइए क्या है आपका जवाब, क्या है आपकी राय?
2: मूवी का नाम है दीवाना।
0: बिल्कुल है दीवाना भाई, और आपने देखी है दीवाना, कितनी बार देखी?
2: मुझे ऐसे बहुत बार का तो नहीं ध्यान, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत बार देखी।
0: आपके हस्बैंड ने, उनको पक्का दिव्या भारती बहुत पसंद होगी।
2: उन्होंने ही मुझे बताया आंसर। हाँ। और मैंने सिर्फ कॉल करके जवाब दिया।
0: अच्छा, तो उनको कहेगा कि वे दिव्या भारती जहाँ पर भी है उनकी आत्मा खुश हो जाएगी कि हमारे एक सच्चे प्रेमी, सच्चे आशिक है डालस में।
2: उन्होंने वो मतलब वो थैंक यू बोल रहे हैं आपको।
0: अच्छा, तो चलिए उनको बेलना बहुत बहुत वेलकम। आप हमेशा हमारा शो सुनते रहिएगा, आपको दिव्या भारती के गाने भी हम सुनवाते रहेंगे कभी कभी, ठीक है?
2: थैंक यू
0: जी, थैंक यू मैम।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
9: Experience peace, music, and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music, and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
10: एंड वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत। कल भाई बारिश हुई थी, पता नहीं आपके एरिया में हुई थी या नहीं, लेकिन वेयर आई वाज इन दैट एरिया और अचानक से ही इतनी, आई वुडंट से इतनी, लेकिन अच्छी खासी बारिश हुई थी फॉर अबाउट 30 मिनट्स और सो, और लगा कि बस क्या बात है, ऐसी बारिशें होती रहे हमारी ज़िंदगी में, जहाँ जहाँ कड़ी धूप हो हमें बारिश मिलती रहे। और कड़ी धूप हो या बारिश, हम आपके लिए लाते हैं सदाबहार गाने, नगमे तराने एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM। चलिए शुक्रिया अदा करते चले हमारे प्रायोजक का, ड्रीम होम मॉर्गेज का। जी हाँ, चाहे आपका नया घर हो ख्वाबों का या आप कुछ रिफाइनेंस करवाना चाहते हैं, एक ही नाम दैट इज हुसैन भाई के लिए आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सालों से है आपकी सेवा में हमारी कम्युनिटी में, एंड दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज। नंबर है उनका 9722455626 एंड द वेबसाइट इज dreamhomemortgage.com। वंस अगेन दैट इज dreamhomemortgage.com, जरूर कॉल कीजिएगा, एंड दैट इज 9722455626। तनिष्क ज्वेलर्स, जहाँ पर डायमंड्स जस्ट फॉरएवर तो होते ही है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत ही खास सहेलियों के सहेली होते हैं, डायमंड्स आर फ्रेंड्स राइट। तो अब आपके लिए है अच्छी खबर ये कि यू कैन एंजॉय 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड एंड हैव 18 कैरेट, जी हाँ 18 कैरेट से ज्यादा अगर आपके पास पुराना कोई सोने की गहने है तो आपको 0% डिडक्शन होगी उसमें। यू कैन विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को, वंस अगेन दैट इज तनिष्क ज्वेलर्स इन फ्रिस्को। अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है सो वेल, जो बातें हैं कुछ मिले जुले गाने हैं, नगमे हैं, लेकिन उसके साथ फिल्मी कहानी है। इस सेगमेंट में भी हम आपको एक कहानी सुनवाएंगे लेकिन कुछ गानों के बाद ऑन 104.9 FM।

0: रोमांस, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम। पूनम धिलौन कुमार गौरव फिल्माया गया था ये गाना, बहुत ही खूबसूरत, आर डी बर्मन साहब के संगीत में सजा हुआ। चलिए अब बारी है एक कहानी की, एक फिल्मी कहानी, टोटल फिल्मी कहानी होती है, जहाँ पर आपको किरदार के नाम से कहानी से फिल्म का नाम मुझे बताना होता है। कहानी का जो हीरो है उनका नाम है मर्फी, जी हाँ, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उनकी आंखों में इतनी शरारत है, दिल में मोहब्बत है, तो पूरा दार्जिलिंग जो है जहाँ पर वो रहते हैं वो सारे उनको बहुत ही चाहते हैं। मर्फी की ज़िंदगी में पहला प्यार बनकर आती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम है श्रुति। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन समाज के बंधन की वजह से श्रुति का जो परिवार है उनकी शादी कहीं और कर देते हैं। वक्त बदलता है, धीरे धीरे बर्फी की ज़िंदगी में दोबारा एंट्री होती है उनकी बचपन की दोस्त जिनका नाम है झिलमिल। झिलमिल जो खुद ऑटिज़म से पीड़ित है और अलग ही दुनिया में रहती है। झिलमिल को अपने परिवार ही जब बोझ समझने लगते हैं, बर्फी जो होते हैं उनके जो हीरो है वो उनका हाथ थाम लेते हैं। झिलमिल और मर्फी की ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब श्रुति सालों बाद मिलती है अपने पहले प्यार से, जिन्हें वो ठुकरा चुकी थी, लेकिन जब वो देखती है कि उनका पहला प्यार झिलमिल के साथ कितना खुश है, श्रुति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस आना चाहती है उनके ज़िंदगी में, लेकिन क्या वो आ पाएगी? झिलमिल और मर्फी का ये जो बहुत ही खूबसूरत मासूम सा प्यार है, क्या वो तोड़ पाएगी? बताएंगे मुझे आप कि कौन सी है ये कहानी, कौन सी है ये
1: क्या हुआ?
0: फिल्म? एंड
1: हेलो
0: रेडियो की आवाज़ प्लीज कम कर दीजिएगा।
1: हेलो
0: हेलो
1: अगेन,
0: हेलो
1: मैंने
0: अगेन।
1: दीवाना भी बताया था।
0: हाँ बताइए, क्या है आपका जवाब?
1: बर्फी इज द मूवी नेम, और ये हम दोनों की बहुत फेवरेट मूवी है।
0: आप दोनों, यानी कि आपके पति की और आपकी?
1: हाँ
0: अरे
1: हाँ
0: वाह,
1: पहले वाला आंसर उन्होंने बताया था, ये हम दोनों को पता था
0: हम दोनों को।
1: आंसर।
0: ओके, तो इट्स अ सेफर नाउ। तो बताइए क्यों आप दोनों को इतनी पसंद है ये फिल्म?
1: एक तो उसका मुझे पर्सनली एंड बहुत पसंद है, कि आपका प्यार इतना स्ट्रांग होता है कि आप साथ बड़े हुए और साथ में ही गए थे।
0: जी, एंड यू नो दे बोथ हैव देयर ओन डिसेबिलिटीज इन अ वे, राइट? लेकिन फिर
1: यस
0: भी किस तरह से दोनों ने दे ओवरकम ऑल द बैरियर और डिसेबिलिटीज, एंड एक अच्छा सा अ वेरी इनोसेंट लव स्टोरी, वेरी इनोसेंट मैरिड लाइफ, एंड इट्स सच अ सच ए प्रिटी, लाइक यू नो, उनको देख कर
1: और जो
0: लगता है कि
1: एक वो एक होता है ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं
0: जी
1: होती
0: जी
1: है, ये
0: बिल्कुल
1: वो वाली मूवी है। इसमें
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: बहुत हैवी डायलॉग्स नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी अपने अपने स्वीट
0: वेरी
1: एक्सप्रेशन,
0: वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट, एंड देन इट
1: इनोसेंट
0: प्रूव्स
1: था।
0: दैट यू नो लव, एज यू सेड, लव डजंट हैव टू हैव एनी लैंग्वेज, प्यार की
1: यस,
0: कोई
1: और एक
0: भाषा
1: और
0: नहीं।
1: चीज जो हमें बहुत पसंद
0: जी
1: है, अगर
0: जी
1: कभी भी कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो उसका वो जो गाना है इतनी सी हंसी, एक बार सुन लो वैसे ही दिन बन
0: हाँ
1: जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सारे गाने, उनके सारे गाने प्रीतम जी के संगीत में
1: हाँ
0: सजे हुए। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही खूबसूरत
1: यस
0: एंड डीप गानों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके हस्बैंड दोनों को फॉर कॉलिंग अगेन। ऑल राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: ओके जी, बाय बाय।

जो रुकी सी चाह बाकी है फिर ले आ दिल, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत रेखा भारद्वाज की आवाज़ में दोस्तों आपने सुना ये गीत। प्रीतम जी का संगीत, फिल्म का नाम बर्फी। सो उनका नाम मर्फी होता है फिल्म में, एंड वो खुद मर्फी नहीं बोल पाते ठीक से, और इसीलिए वो मर्फी का बर्फी करते हैं। सो द होल फिल्म इज़ अबाउट टू डिसेबल पीपल, हाउ दे फॉल इन लव एंड हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ बीन पोर्ट्रेट बाई अ डायरेक्टर अनुराग बासु की ये फिल्म है। और इस फिल्म के लिए वो जब झिलमिल का रोल तलाश कर रहे थे, झिलमिल के किरदार के लिए कि किनको तय किया जाए, राइट, तो बहुत सारी हीरोइंस उनके जहन में थी। एंड प्रियंका चोपड़ा जब उनके जहन में आई तो ही टोल्ड प्रियंका चोपड़ा, यार ये प्रियंका चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मिस वर्ल्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ मिस वर्ल्ड ग्लैमर इन दिस रोल, मुझे झिलमिल चाहिए। और झिलमिल का किरदार ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी मिस वर्ल्ड की झलक भी ना आए आपके किरदार में। और वही हुआ, जो छोटे बाल कटवाने थे। सो अक्सर जब भी कोई हीरोइन को कोई भी रोल मिलता है, एंड यू नो दे हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट हेयर स्टाइल राइट थ्रू आउट द मूवी, तो क्या वो थ्रू आउट द मूवी थोड़े बाल कटाते होंगे। सो दे हैव डिफरेंट वीग्स एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड दे हैव वॉट नॉट। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने यह तय किया था कि इस रोल के लिए खुद इतने छोटे बाल करवाएंगी, विच शी डिड नॉट वेयर एनी वीग। और वो जो उनका रोल था ऑटिज्म का, फॉर दैट शी स्पेंड मैनी मैनी डेज विथ ऑटिस्टिक पेरेंट्स, के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ, कि उनके बिहेवियर कैसे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। और ये सारी जो मेहनत है, रणबीर कपूर की मेहनत कर लीजिए या इलियाना डिक्रूज का भी बहुत अच्छा रोल था, इंक्लूडिंग प्रियंका चोपड़ा दाइस सर, उस साल के लिए जो इंटरनेशनल ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इस फिल्म को भेजा गया था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरन लैंग्वेज, हमें नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन देखिए, हमें कृष्ण भगवान ने कहा है राइट, कर्म कर फल की आशा मत रख, तो हमने अच्छा कर्म किया, अच्छी फिल्म भेजी, अच्छी फिल्म की विथ अ गुड स्क्रिप्ट गुड म्यूजिक, मिलना ना मिलना हमारे हाथ में नहीं था। खैर, ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपके लिए लाती हूँ फिल्मी कहानी के सेगमेंट में ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: कुछ गाने, कुछ कहानियाँ, और अक्सर आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे कुछ अलग बातों के साथ मैं रहती हूँ, और मैं हूँ नीलम आपके साथ ऑन 104.9 FM फनी एशिया रेडियो। होगा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन अभी भी दो कहानी बाकी है जिससे आपको फिल्म का नाम पहचानना है। सो आपको कहीं नहीं जाना, वापस लौट कर आना है ऑन 104.9 FM फनी एशिया रेडियो। अगर आप लंच पर जा भी रहे हैं तो चलिए हम आपको एक रिकमेंडेशन देते चले। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो है लोकेटेड इन गार्लैंड, अगर आपको अच्छी अच्छी स्पाइसी डिशेज की बहुत क्रेविंग हो रही है, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, सो वेल वंस अगेन इट इज तंदूरी फ्लेम्स इन गार्लैंड, जरूर जाइएगा। एंड वाइल यू आर कमिंग बैक लंच के बाद, तब भी हम आपको मिलेंगे, जी हाँ, आपका हमारा साथ होगा 3 बजे तक, जहाँ 2 बजे तक कुछ ये मिले जुले गाने नगमे सुनवा रही हूँ। एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप, हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स की और एक्टिविटीज़ की जानकारी मैं नीलम देती हूँ आपको, और उसी के साथ जुड़ते हैं हमारे साथ किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि। दैट इज एवरी सैटरडे। एंड एज आई सेड, 2 बजे तक होगा ये कहानियों का सेगमेंट आपके साथ, और चलिए चलते चलते हम आपको AG फिनटेक्स की भी कुछ जानकारी दे दें। 4699429888, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्स फर्म इन द US, दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो बिजनेसेस, दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। वंस अगेन दैट इज AGfintechs.com। एंड द नंबर वंस अगेन इज 4699429888। कहीं मत जाएगा, हम बने रहेंगे यहाँ।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTechs, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
7: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan.
8: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
11: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
10: Kaise?
11: Page 3 eatery?
10: No, not another restaurant again.
11: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
1: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस, और हाँ सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice.
14: Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Park. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
19: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
20: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
19: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
20: और एंटरटेनमेंट,
19: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
20: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
19: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
21: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
22: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
21: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

एक ऐसी कंपनी थी जिसने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि ABCL नाम सुना होता है, बिल्कुल सुना होगा भाई, क्योंकि श्री अमिताभ बच्चन की वो कंपनी थी जहाँ पर वो फिल्म्स बनाते थे। नॉट एज मैनी जहाँ जितनी उन्होंने सोची थी, क्योंकि कुछ ही सालों में उनकी कंपनी को बैंकरप्ट से डिक्लेयर करनी पड़ी थी। खैर, ऐसे बहुत सारी बातों के साथ, मिले जुले नगमों के साथ मैं रहूंगी आपके लिए टिल 2 PM ऑन 104.9। और आज ये फिल्मी कहानी का सेगमेंट जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं एक कहानी, दो तो अब तक आपने सुन ली, अब तीसरी कहानी होगी जिससे आपको कहानी से नाम बताना होता है फिल्म का। तो तीसरी कहानी सुनने से पहले चलिए एक और गीत, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और कहानी कुछ किरदार के नाम के साथ।

हरे हरन और साधना सरगम की आवाज़ के साथ प्यार भरा स्वागत इस कार्यक्रम में, इस सेगमेंट में जो आपके लिए मैं नीलम लाती हूँ हर शनिवार की दोपहर टिल 2 PM एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, तेरे मेरे सपने ये है फिल्म का नाम, जो ABC

0: बहुत ही खूबसूरत सोनाली बेंद्रे जी, हाँ सोनाली बेंद्रे पे फिल्माया गया था गीत। उनके साथ थे अतुल अग्निहोत्री, मैं सोच रही थी उनका नाम क्या है, अतुल नॉट कुलकर्णी, अतुल अग्निहोत्री एंड सोनाली बेंद्रे की ये बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक पेशकश आपने सुनी और 104.9 FM फनीशा रेडियो, और मैं हूँ नीलम आपके साथ। चलिए अब है एक कहानी का वक्त। सो कहानी में ये होती है बात कि मैं आपको एक कहानी सुनवाती हूँ जिससे आप मुझे फिल्म का नाम बताएंगे, ठीक है? तो आज के सेगमेंट की ये है हमारी तीसरी कहानी। कहानी में जो है एक बहुत ही आवारा सा लड़का, गुस्सैल लड़का, बेपरवाह लड़का जिसका नाम है मैडी, और मैडी का दूसरा नाम है माधव शास्त्री। माधव शास्त्री मैडी की ज़िंदगी में एंट्री होती है खूबसूरती की मिसाल जैसी रीना की। रीना को पहली नज़र में देखते ही मैडी अपना दिल खो बैठते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि रीना की शादी उनके बचपन के दोस्त राजू के साथ तय हो चुकी है। रीना ने राजू को कभी देखा नहीं, बस यहीं पर मैडी एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। रीना को पाने के लिए वो खुद राजीव बनकर उनके सामने चले जाते हैं। फिर क्या, रीना भी इन्हें राजीव मानने लगती है और दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा है। ये खूबसूरत लव स्टोरी बढ़ ही रही है तब अचानक असली राजीव की एंट्री हो जाती है। रीना के सामने मैडी का झूठ पानी की तरह आ जाता है और रीना को लगता है कि मैडी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। वो मैडी से नफरत करने लगती है। एक तरफ है मैडी का सच्चा प्यार तो दूसरी तरफ है राजीव जो उनके बचपन के मंगेतर है। तो रीना क्या करेगी, अपने सच्चे प्यार के लिए जाएगी या अपने बचपन के दोस्त की तरफ? कौन सी है कहानी, कौन सी है फिल्म का नाम बताएंगे मुझे आप? एंड फनीशा योर लाइव ऑन रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा।
1: जी हाय, हेलो नीलम जी, कैसे हैं?
0: बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं इस सैटरडे आफ्टरनून?
1: जी बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सोहेल बोल रहा हूँ।
0: जी सोहेल साहब,
1: आपने आप जी कैसे?
0: बस बस गुड सर।
1: आपने हर स्टोरी में क्लू दे दिया है तो यू मेक इट वेरी इजी।
0: तो कौन सा क्लू आपको मिला बताइए, क्या क्लू मिला आपको इस कहानी में? Where did the,
1: मैडी, मैडी को, मैडी का
0: मैडी को कौन नहीं जानता है? Yes. और उनकी ये पहली फिल्म थी, you know that, right, सोहेल साहब?
1: Exactly.
0: उनकी पहली फिल्म थी, so very cute. तो कौन सी फिल्म है?
1: रहना है तेरे दिल में रिदम।
0: बिल्कुल, आपके आपकी मुझे पता है आपने हमेशा आपकी वाइफ के लिए बहुत तारीफ की है तो आई एम श्योर कि वो आप उनके लिए ये कहते हैं, राइट? उनके लिए बिल्कुल।
1: हाँ नीलम जी, आई एम सॉरी, एक गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड कि नहीं?
0: आई विल ट्राई सर, बताइए कौन सा है?
1: जी मरियम, गाना बोल जल्दी।
2: एनी रोमांटिक
0: हमारे गाने सारे रोमांटिक है मरियम जी। चलिए अपना रोमांटिक गाना आप दोनों के नाम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फनीशा रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिएगा। रेडियो, अगर आपकी रेडियो की आवाज कम नहीं होगी तो हम आपके कॉल्स ऑनर नहीं ले पाएंगे। बातें चल रही है फिल्मी कहानी की और मैंने आपको एक कहानी सुनवाई थी जो हमारे एक लिस्टनर ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया था। जी बिल्कुल, मैडी यानी कि माधव शास्त्री के प्यार की कहानी। लेकिन क्या झूठ हमेशा झूठ ही रहता है या सच्चे प्यार के सामने झूठ भी सच हो जाता है? यही है कहानी इस फिल्म की जिसका नाम है रहना है तेरे दिल में। सोहेल जी और आपकी पत्नी मरियम जी के लिए, दोनों के लिए गाना।

दिल को तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेकारी, कहो मैं क्या करूं जी। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, फिल्म देखनी है अगर अभी तक आपने नहीं देखी। मैडी यानी कि माधवन की ये पहली फिल्म थी और उनके साथ थी दिया मिर्जा, जिनकी भी ये पहली फिल्म थी। वेरी ब्यूटीफुल दिया मिर्जा, आई ऑलवेज लाइक हर इन एनी रोल। बहुत ही खूबसूरती और उनकी मासूमियत है उनके चेहरे पे। एंड द फिल्म नेम इज रहना है तेरे दिल में। कल्ट क्लासिक फिल्म जिसे RHTDM के नाम से भी हम पहचानते हैं। जी हाँ, तो आज है भाई फिल्मी कहानी का सेगमेंट। एक और कहानी आएगी लेकिन अब कमर्शियल ब्रेक के बाद। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो। और आपका और हमारा साथ, जैसे कि आप जानते हैं, रहता है 3 बजे तक।

0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जी हाँ, एक ऐसा नाम जहाँ पर आपको पूरी अटेंशन मिलेगी आपके हेल्थ केयर की तरफ से, फिजिशियन की तरफ से। अगर आप आपके नए फिजिशियन की तलाश में हैं फॉर एनुअल चेक्स या कोई भी और भी आपके मसले हैं फॉर एनी ऑफ योर हेल्थ कंसर्न, एक ही नाम है, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। नंबर है उनका 214-666-2259, वंस अगेन दैट इज 214-666-6259, जहाँ पर आपके लिए है आपकी, यू आर जस्ट नॉट अ नंबर, यू आर जस्ट नॉट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली फॉर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। वंस अगेन, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल उनको कॉल कीजिएगा। इट इज़ जस्ट नॉट वन नंबर और वन पेशेंट, इट इज़ अबाउट अटेंशन एंड गिविंग फुल ड्यू टाइम, दैट इज़ अबाउट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं, 30 मिनट्स, पूरी 30 मिनट्स। एंड द नंबर इज वंस अगेन 214-666-6259। और भी एक कहानी बाकी है, जी हाँ, एक और आखिरी कहानी बाकी है जो हम कहेंगे आपको आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। तो क्या होता है इसमें, हम आपके लिए कुछ मिले जुले गाने लाते हैं इस सेगमेंट में, और जहाँ पर हम आपको फिल्मी कहानियों भी सुनाते हैं। तो ये होती है हमारी फिल्मी कहानी का सेगमेंट। इसके अलावा और भी हमारे सेगमेंट होते हैं, चाहे कलाकारों को सेलिब्रेट करें, चाहे हम आपके लिए लाते हैं एक ही विषय की फिल्मों की बातें, किसी एक ही साल में रिलीज हुई फिल्मों की बातें, या एक ही शब्द पर आधारित गाने, कुछ आपकी राय, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर मेरे साथ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM संडे। जी हाँ, कल भी मुलाकात होगी आपकी और हमारी 12 से 1 के बीच में। रीजनल शो गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ राइट आफ्टर 1 PM। एक ही घंटे का होता है सेगमेंट हमारा, बट दैट इज ऑल अबाउट गैर फिल्मी सेगमेंट, जहाँ पर गैर फिल्मी गाने, वेब सीरीज की बातें, OTT प्लेटफॉर्म की बातें, ये सारी बातें रहती है आप ही के साथ ऑन 104.9।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad and 75-inch, 65-inch and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 AM to 10 AM. Fort Worth.
9: First 5 customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
8: India Bazaar, the people's store.
10: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
11: Proudly supported by Roma Pithadia, Sri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
10: Register free now at meditation.funasia.net.
12: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। क्या बात है भाई। और अमित कुमार की आवाज़, उनके साथ थी लता जी ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूँगी 3 बजे तक और 2 बजे तक फिल्मी कहानी का है सेगमेंट। अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, सो वेल, प्यार भरा स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जो हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर। एक और आखिरी कहानी आपको सुनवानी है, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे, गौर से सुनिएगा, एक कहानी, बिल्कुल फिल्मी कहानी, आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में फ़िल्म का नाम पाप सुना आपने ये गीत लागी मन की लगन ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो। चलिए अब मैं आपको आखिरी कहानी सुनवाती हूँ हमारे इस कार्यक्रम की। कहानी में नैना है। नैना जो एक बहुत ही गंभीर लड़की है, अपनी हमेशा अपनी जिम्मेदारी के साथ इतनी बिजी रहती है कि जैसे कि उसकी ज़िंदगी में गाना हंसना कुछ भी नहीं है। उनकी बोरिंग ज़िंदगी में रोशनी बनकर आ जाते हैं उनके पड़ोसी अमन, जो अपनी ज़िंदा दिली की मिसाल, वो हर पल खुल कर जीते हैं, अपने दिल से जीते हैं और वो कहीं ना कहीं नैना की उदासी को भी दूर करते हैं। नतीजा नैना को अमन से हो जाता है प्यार। कहानी में एक और किरदार है जिनका नाम है रोहित, जो नैना के सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो भी चुपके चुपके नैना के दिल में प्यार चाहते हैं, लेकिन नैना के दिल में तो प्यार हो गया है अमन से। एक दिन नैना उन्हें इजहार करती है लेकिन अमन उस प्यार को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो शादीशुदा हूँ। सच कुछ और ही था, क्योंकि अमन को पता है कि वो खुद अपने दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि नैना की ज़िंदगी में वो कोई भी रुकावट लाए। और ये भी जानते थे अमन कि नैना को बेहद प्यार करते हैं रोहित, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया और नैना और रोहित को करीब लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग कर दिए, ताकि उनके जाने के बाद नैना को संभालने के लिए रोहित का प्यार हमेशा उनके पास रहे। ऐसे आशिक है अमन, जो अपनी आखिरी सांस तक भी नैना को उतना ही चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि नैना की ज़िंदगी में भी प्यार हमेशा रहे, खुशियाँ हमेशा रहे। तो क्या है ये कहानी नैना की, अमन की और रोहित की, बताएंगे मुझे आप यहाँ ऑन 104.9 FM या लाइव ऑन एयर। रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिएगा। यस सर, बताइए।
1: मूवी नेम इज कल होना हो?
0: यस सर इट इज। आपने देखी है ये फिल्म?
1: बहुत बार।
0: बहुत बार क्यों? प्रीति जिंटा के लिए या शाहरुख खान के लिए?
1: शाहरुख खान के लिए।
0: शाहरुख खान के लिए, वंडरफुल। यस इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड बाय करण जौहर जी एंड फनेशिया योलावन एयर।
2: जी हाँ नीलज जी, मूवी का नाम है कल होना हो।
0: बिल्कुल सर, कल होना हो नहीं, हमें पता, हम आज है आपके साथ उन फनेशिया। आपका नाम क्या है?
2: क्रितिज
0: जी, बहुत गुड, बहुत खूबसूरत नाम। बहुत दिनों के बाद ये मैंने नाम सुना। व्हेन आई वाज इन इंडिया आई यूज्ड टू हियर दिस होराइजन, बट वेरी वेरी प्रिटी नेम। थैंक यू सर।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: जी। एंड लास्ट कॉलर ऑन एयर, बहुत सारे कॉल थे लेकिन और नहीं ले पाऊंगी। बताइए क्या है आपकी राय और क्या है आपका जवाब?
3: जी द मूवी इज कल होना हो।
0: कल होना हो एंड दिस इज आरती, राइट? आरती विल। और आपके बाद एक और चली कॉल ले लेते हैं। फनेशिया योर लाइव ऑन एयर।
4: हाय अंजू
0: जी। मंजू जी?
4: अंजू।
0: अंजू जी, अच्छा अंजू नॉट मंजू। ट्वीन सिस्टर्स की कहानी अगर बनाएगी कल हम प्रोड्यूसर सीता और गीता की तरह हम रख देंगे नाम अंजू और मंजू। हाउ अबाउट दैट?
4: एक्चुअली मेरी दीदी का नाम मंजू है।
0: हाँ तो चलिए हमने सही पकड़ा, राइट? अंजू और मंजू। बताइए अंजू जी, कौन सी है ये कहानी?
4: दिस इज कल होना हो, शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान,
4: सैफ अली खान।
0: और उनकी यू नो दैट जो टिपिकल स्टाइल है, वो हाथ फैला कर जो डांस करने की, वो इसी फिल्म से आई थी। इसी फिल्म में उन्होंने वो ऐसे पोज दिया था कल होना हो में, तब से इट इज शाहरुख खान स्टाइल। तो आपने कितनी बार देखी है मैम ये फिल्म?
4: ये फिल्म मैंने शायद 2-3 बार देखी है, लेकिन मेरी बेटी ने देखा है बहुत बार एंड जब भी देखती है रोती है।
0: क्यों? अच्छा शाहरुख खान नहीं रहते इस फिल्म में उनके एंड में, इसलिए। लेकिन देखिए ही शाहरुख खान, उन्हें सिंपथी वोट मिलना ही चाहिए, राइट? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फिल्म करे और वो ना मर जाए, कोई और मर जाए। तो शाहरुख खान की फिल्म है भाई, तो पूरी हाईलाइट उन पर ही रहनी चाहिए। एंड इट इज कल हो ना हो।

जो है समा कल हो ना हो, गौतम बुद्धा ने एक बार कहा था, एंड आई एम श्योर हर सेंट की यही बात होती, कि पानी एक बार बह जाता है, नदी हो या कहीं पे समुंदर, फिर से वो वापस नहीं आता। पानी की बात हो या पलों की बात हो, कोई भी पल, फिर से वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही पल कभी नहीं आएगा, एंड दैट इज़ कल हो ना हो। सैफ अली खान साहब के साथ शाहरुख खान एंड थी प्रिटी जिंटा इन द फिल्म कल हो ना हो। एंड यू नो आई वाज जस्ट अ वाइल बैक, मैं सोच रही थी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने पहले रहना है तेरे दिल में की कहानी आपको बताई थी इसी फिल्मी कहानी के सेगमेंट में, जिसमें भी सैफ अली खान था, विच वॉज अ प्योरली कोइंसिडेंट। लेकिन देखिए उस फिल्म में भी उन्हें हीरोइन नहीं मिलती, राइट, रहना है तेरे दिल में। देन देर वॉज वन मोर फिल्म लव ट्राइंगल, जिसमें उनके साथ थे ऋतिक रोशन, आई थिंक ना तुम जानो ना हम, यस दैट वॉज अ फिल्म, उसमें भी उन्हें हीरोइन नहीं मिलती। तो जहाँ जहाँ बेचारे ने काम किया है एज अ सेकेंड लीड, उन्हें हीरोइन नहीं मिलती। लेकिन करण जौहर ने सोचा होगा कि भाई हमेशा ऐसा नहीं अच्छा कि शाहरुख खान को हीरोइन मिले और हमारे बेचारे सैफ अली को ना मिले, तो उन्होंने इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी बना दी कि जहाँ पर मिल जाती है हीरोइन सैफ अली को एंड नॉट टू शाहरुख खान। ऐसे कुछ किस्से कहानियाँ हम आपके लाते हैं एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो with me, your host, Neelam.

जुर्म सिर्फ इतना है उनको प्यार करते हैं जी बिल्कुल, और हमारा जुर्म ये है कि हमें संगीत से प्यार है। विषय कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सेगमेंट कोई भी हो, अच्छा संगीत लाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है यहाँ पर ऑन एवरी वीकेंड, दैट इज सैटरडे एंड संडेज ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। सैटरडेज 12 से 3 के बीच में होगा आपका और हमारा साथ, संडेज होता है यही साथ टिल 2 PM, जिसमें रीजनल कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम आपके लिए 1 बजे तक, और 1 से 2 के बीच में होती है फिल्मी गाने नहीं लेकिन गैर फिल्मी गानों की बातचीत, दैट इज एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM। अच्छे संगीत में नए कंपोजर्स में बिल्कुल आई लव शाश्वत सचदेव जी, हाँ, जिन्होंने हर जोनर में, अगर आपने धुरंधर 1 and 2, विच आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दोज एक्शन फिल्म्स, तो फिल्म्स की बात रहने दीजिए, लेकिन संगीत आई लव्ड ऑल हिज सॉन्ग्स, इसीलिए जब भी मैं मिले जुले गाने नगमे लाती हूँ विच इज़ नॉट एक्चुअली अ थीम बेस्ड गाने होते हैं, तहाँ वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ उनके ही संगीत में सजे हुए गानों के लिए। तो चलिए एक और गाना हो जाए, एंड एज आई सेड यू नो, गाने नए हो या पुराने, गाने फिल्मी हो या गैर फिल्मी, अगर गानों में सुर है, संगीत है, ताल है और लय है, तो बिल्कुल आप सुनेंगे मेरे साथ एवरी संडे, ये है मेरा यानी कि नीलम का वादा ऑन फनेशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: डैलस, आर यू रेडी? जाबू टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

दिस इज केसीएमपी 104.9 एफएम फनेश रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे ये कार्यक्रम के साथ जो है आप ही की सेवा में हर शनिवार की दोपहर और उसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं प्रस्तुत करते हैं बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में होने वाले इवेंट्स और एक्टिविटीज की जानकारी, ऑल द नॉन प्रॉफिट एंड सोशल इवेंट्स जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, एंड ऑल्सो वी टेक एनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन एयर जो हमें बताते हैं उनकी संस्था के कुछ अपकमिंग इवेंट्स। कार्यक्रम के दौरान आप ही के पसंद के कुछ इंस्पिरेशनल, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल एंड पेट्रियोटिक गाने होते हैं, तो आप जो भी सुनना चाहे विच इज़ नॉट बॉलीवुड, ऑफकोर्स बॉलीवुड बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इंस्पिरेशनल या स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल बात हो वो हम आपको ज़्यादातर लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे टिल 2-3 PM। और ये है कार्यक्रम आपका, आप ही से बनता है, आप ही के लिए होता है, हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM।

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल। 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट। सैटरडे टू संडे 11:30 AM to 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग। What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
8: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
2: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
10: वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फनीशा रेडियो। जी बिल्कुल, वेनेसा इवेंट आपके जिंदगी के छोटे या बड़े मौके के लिए, सेलिब्रेशन के लिए एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट। आज ही आप हरी साहब को कॉल कर सकते हैं 469-442-8770, दैट इज 469-442-8770। चाहे आपकी शादी की बात हो, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी खास सेलिब्रेशन, एक ही नाम, फोटोग्राफी से लेके हॉस्पिटैलिटी से लेके डिलीशियस कैटरिंग के लिए, एंड दैट इज वेनेसा इवेंट। राखी का त्योहार बहुत दूर नहीं है और इस त्योहार में अगर आपको जीतना चाहे फ्रॉम चौकटो कैसीनो एंड रिजॉर्ट, तो वेल आपको एक बहुत ही आसान काम ये करना है। यू हैव टू सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप नंबर 214-837-7147, दैट इज 214-837-7147, और आपके सिबलिंग के साथ की कोई अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी मेमोरी के लिए आप जीत सकते हैं डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड ऑफ कोर्स द ग्रैंड प्राइजेस सिबलिंग रियूनियन वीकेंड। वंस अगेन, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज ब्रॉट यू बाय चोक्टो कैसीनो एट रिजॉर्ट ड्यूरेंट। द नंबर यू कैन सेंड अ टेक्स्ट इज 214-837-7147। और अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, वेल यह है कम्युनिटी राउंड अप विद मी और होस्ट नीलम, जहां पर आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूं हमारे शहर में होने वाले इवेंट्स एक्टिविटीज की जानकारी, उसी के साथ कुछ पैट्रियोटिक स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाने आप ही के लिए टिल 3 PM। आपसे बनता है, आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM।

कुछ मिट्टी की खुशबू के साथ हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर, और बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी हमने अब तक आपको दे चुके हैं। नाउ फ्रॉम श्री राम मंदिर इन प्लेनो, कुछ जानकारी उनकी तरफ से। माता की चौकी हैपनिंग ऑन 14th ऑफ अगस्त, दैट इज नेक्स्ट फ्राइडे, एंड सत्यनारायण पूजा ऑन 28th ऑफ अगस्त, दैट इज हैपनिंग वंस अगेन एट श्री राम मंदिर इन प्लेनो। उसके अलावा जो हमारे साउथ एशियन इवेंट्स होते हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम इवेंट्स की भी कुछ जानकारी लाने की हमारी कोशिश होती है। एपिक समर बैश एंड इट इज हैपनिंग टुडे 5 PM till 8 PM एंड द लोकेशन इज हिल साइड कम्युनिटी चर्च इन फोर्ट वर्थ टेक्सास, दैट इज टुडे 5 PM till 8 PM। इट्स अ फ्री कम्युनिटी इवेंट। कम्युनिटी फंड डे एंड स्कूल सप्लाई शेयर एंड हैपनिंग टुमारो 11 AM till 2 PM, लोकेशन इज आर्लिंगटन साउदर्न वर्शिप सेंटर इन आर्लिंगटन टेक्सास। वंस अगेन इट इज हैपनिंग टुमारो, कम्युनिटी फंड डे एंड स्कूल सप्लाई शेयर 11 AM till 2 PM। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी, और अगर आप हमें अभी सुन रहे हैं और आप भी किसी मंदिर से, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, आप भी किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और आपकी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहे, एंड दिस इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, ड्यूरिंग दिस आवर इट्स एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है हमारी कम्युनिटी को मदद करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू कैन रीच आउट टू अस neelam@funasia.net। एंड इट इज़ ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी बाय फनेशिया रेडियो, ब्रिंकिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आप ही के पसंद के होते हैं, इंस्पिरेशनल मिट्टी के खुशबू के साथ, कुछ लोक गीत जहाँ जहाँ आपको आपके वतन की याद आ जाए, ऐसी बातों के साथ, ऐसे गानों के साथ हम आपके लिए लाते हैं ये सारी बातें। जी हाँ, अलॉन्ग विथ सम अनाउंसमेंट्स विच आर नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की तरफ से, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं ये सारे जो हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। जी हाँ, इस शो के जरिए कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे गाने लाए और उसी के साथ ऐसी बातें लाए विच आर वेरी इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल ऑन 104.9 FM।

वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आप ही की पसंद पे ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो। चलिए जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताती हूँ। और एक बार एक आदमी रेत पर टहल रहा था समुंदर के किनारे। उसने देखा कि एक लड़का समुंदर के किनारे जितनी भी मछलियाँ आ रही थी वापस पानी में वो फेंक रहा था। हजारों मछलियाँ थी जहाँ पर, और ये जो छोटा सा लड़का था वो एक एक करके उठा उठा कर वहाँ पर पानी में वापस फेंक रहा था। तब वो बड़े आदमी को लगा कि ये इतनी सारी मछलियाँ, ये इतना छोटा बच्चा कैसे ये सारी बातें कर पाएगा मुमकिन। तो उसने कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, हजारों मछलियाँ हैं, कब तक तुम ऐसे उसको एक एक कर कर फेंकते रहोगे, जब भी कोई लहर आएगी वापस चली जाएगी ये मछलियाँ। लड़के ने एक छोटी सी मछली उठाई और पानी में फेंक दी। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अंकल अंकल किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन देखिए जो एक छोटी सी ये मछली है ना, उससे फ़र्क पड़ा क्योंकि वो वापस चली गई। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हर बड़ा बदलाव जो होता है, हम सोचते हैं कि बड़े कदम से होते हैं, नहीं, हम जो भी छोटे कदम होते हैं हमारे छोटे कदम से, जस्ट इन इनिशिएटिंग अ स्मॉल स्टेप, उससे भी फ़र्क हो सकता है। हमें कभी कभी लगता है कि उम्मीद नहीं है, इतनी सारी परेशानी है, कब क्या होगा, लेकिन कभी भी यही नहीं सोचना चाहिए कि एक छोटे बदलाव से, एक छोटी चीज़ से भी उम्मीद हमें मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। तो बस यही आज की बात कि ज़िंदगी में बड़े बदलाव के लिए छोटी बात भी बहुत बड़ी है। छोटी सी चीज़, छोटा सा स्टेप, वन स्मॉल इनिशिएटिव कैन चेंज।

और इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। मुलाकात होगी अब हमारी कल जी बिल्कुल 12 से 2 के बीच में। अनुमति और दीजिए आज्ञा मुझे इस कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, कम्युनिटी के लिए प्रस्तुत करते हैं, हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
4: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स. डक टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड. सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
2: तो फिर
9: अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
12: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
11: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
13: A very good afternoon to all the listeners. You are tuning into the Real Estate and Mortgage Hour brought to you by Dream Home, a division of Brazos National Bank, an equal housing lender. We bring you this show every Saturday between 3 p.m. and 3:30 p.m. The whole and sole purpose of this show is to keep the community updated with what's happening in the mortgage world, the do's and don'ts when you're planning to buy a house. Listeners, definitely we are seeing that this is 100% seller's market, a buyer's market, beg your pardon. It is definitely buyer's market. So we are seeing builders being aggressive, getting deep discount from builders, motivated sellers. So I would encourage those of you on the sideline, if you are especially a first-time home buyer, don't wait for the rates to drop. Do not wait for rates to drop. Buy when the price of the house are lower, meaning when it is buyer's market. And then you can always refinance your interest rates. And the reason I keep saying this is because once you purchase your house, once you buy your house, the house price is locked. But the interest rates can always change. So why not take advantage of this? So listeners, if you are right now renting, you have a stable job, you know for next, you know your company is not laying off or you're self-employed, there are a lot of programs out there for self-employed borrowers also, which I will be discussing in detail today, different kind of programs, and also try to take some calls on air. But if you are a first-time home buyer or you are an investor, jump on this opportunity. And honestly, listeners, some of you might be thinking that, why would I

0: What a beautiful Bangla song, and it kind of reminded me वो कौन सा तुझे देखा तो ये जाना सरम, ऐसा लग रहा था ना शुरू में जब गाना शुरू हुआ, that it sounds similar to that. But then again, you know, राग तो वही होते हैं, बस गानों में अलग lyrics होते हैं और the combination sometimes can be different. Anyway, I hope you guys enjoyed the Bangla song. Let's move on to our next caller. Phanisha Radio, आप on air हैं, आपका नाम? हेलो फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, प्लीज स्पीक अप. हेलो हेलो, प्लीज स्पीक अप फनीशा रेडियो. ओके, कॉल कनेक्टेड है लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग. आई हैव टू गो अहेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर. आई फील टेरिबल व्हेन आई हैव टू डू दैट. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: पार्थ.
0: ओके पार्थ, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: उड़िया सॉन्ग.
0: आपके गाने का नाम क्या है?
1: खेला की प्रेमो.
0: खेला
1: HELA. खेला HELA.
0: ओके, खेला की प्रेमा.
1: KI.
0: ओके, got it. Found the song. और पार्थ, आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: अर्विंग
0: से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आप हमेशा मेक श्योर करते हैं कि बोली प्यार की सेगमेंट में एक दो उड़िया गाने जरूर प्ले किए जाए, है ना? ये कसम खाई भी आपने. ओके, यू हैव टू रिप्रेजेंट द उड़िया कम्युनिटी. ऑलराइट गाइस, 3:52, यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की, जिसमें अब हमारा अगला गाना होगा उड़िया लैंग्वेज में.

0: आई डू हैव अ कन्फेशन टू मेक. यू नो यूजुअली जो भी गाने होते हैं ना जो मैं इस सेगमेंट में प्ले करती हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि हमें इतनी सारी लैंग्वेजेस की रिक्वेस्ट प्ले करनी होती है 5 बजे से पहले पहले, तो मेरी कोशिश होती है कि हर गाने का मतलब आधा पार्ट आपको सुनाया जाए, यानी कि एक मुखड़ा एक अंतरा एंड दी एंड. ये गाना इतना प्यारा था, आई कुडंट रिजिस्ट. आई वाज लाइक ओके तो मुझे प्ले करना ही होगा. एंड दैट्स व्हाई वी हर्ड सो मच ऑफ दिस ब्यूटीफुल उड़िया सॉन्ग दैट वाज रिक्वेस्टेड बाय पार्थ. 55 मिनट्स पास 3, यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट. फनीशा रेडियो पर आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: हेलो अमरिन जी.
0: हाय, हु इज दिस? सोहेल.
1: हाय, केमन आछेन?
0: आमी भालो आछी, आपनी केमन आछेन? मारियम केमन आछे? Of course I did.
1: We really like you.
0: Thank you so much. I love you all calling. It makes me feel very happy too. सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में कह रही हूँ.
1: नहीं नहीं, हम भी आपसे बहुत कनेक्टेड है, ट्रस्ट मी.
0: थैंक यू. अब बताइए जल्दी से क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
2: चिरोदिन
0: ओके, तुम ही जे आमार. ऑलराइट, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट. और आज कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
2: रिचर्डसन.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ड्राइव सेफली, हियर इज योर सॉन्ग. एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ ज्वेलर्स. आई नो यू थॉट दे वर इन, आप उन्हें इंडिया छोड़ा है, लेकिन वो इंडिया से यहाँ पीछे पीछे आपके पास आ गए हैं. और 60 साल से बेहतरीन ज्वेलरी लोग उनसे खरीद रहे हैं. अब आप राइट हियर फ्रिस्को मेन स्ट्रीट उनकी लोकेशन है, जहां जाकर आप भी खरीद सकते हैं खूबसूरत गोल्ड डायमंड और ब्राइडल ज्वेलरी. दैट्स PMJ ज्वेल्स राइट हियर इन फ्रिस्को.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
7: सच में सब संभाल लेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
17: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
19: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
20: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
19: कहाँ?
21: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe एंड अपस्केल restaurant for the perfect family dinner.
17: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
22: Weekend ka plan?
21: मेहमान अभी तक नहीं मना। बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
0: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
1: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आई बी विथ यू टिल 6 PM। इट इज 5 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 8th ऑफ अगस्त 2026। इट्स अ सैटरडे आफ्टरनून और आप सुन रहे हैं सैटरडे का स्पेशल सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने बाय रिक्वेस्ट। The only condition that we have is the fact कि हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं and we don't play any Hindi, Urdu or English song during this segment. Also, because it's such a popular segment, the whole time is 5 to 10 minutes. So please be mentally prepared when you call in to the studio. 972-235-5555 है हमारे स्टूडियो का नंबर। Fun Asia Radio, आप ऑन एयर है। Thank you so much for patiently holding. आपका नाम?
22: मेरा नाम है अमित कुमार।
1: जी अमित, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
22: It will be a Bhojpuri song. It is a Bollywood movie, but the whole movie was made in Bhojpuri.
1: Okay.
22: And the movie name is Nadia Ke Paar, and the song is Kaun Disha Mein Leke Chala Re Bitoiya.
1: Kaun
22: Disha Mein. It's a very old movie.
1: मैंने सुना है, बड़ा प्यारा सा गाना है। मुझे तो वो लगता था, जब मतलब मैं जब सुनती थी मुझे लगा था कि वो हिंदी स्टाइल है, because समझ में आती है, right? Bhojpuri. But it's actually a totally different language. I know.
22: So, yeah, another fun fact from me is that the movie Hum Aapke Hain Kaun is a remake of this movie.
1: Oh my God, I did not know that. Well, very interesting. Thank you for sharing that with us, Amit. Aur aaiye, ladies and gentlemen, sunte hain Nadia Ke Paar, Bollywood film ka ye Bhojpuri gana Hemlata ki awaaz mein.

0: अमित जी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम ये भोजपुरी गाना। बोली प्यार की सेगमेंट की खासियत ये है कि इसमें भांत भांत की भाषाओं में, जुबानों में सुनते हैं आप गाना। वट एवर यू रिक्वेस्ट, अब वो चाहे तेलुगु हो, पश्तो हो, सराइकी हो, गुजराती हो या हरियाणवी, सिंधी हो या हो मलयालम, वट एवर सॉन्ग यू वॉन्ट हियर यू गोना हैव टू कॉल अस योर सेल्फ 9722355555। अपनी लैंग्वेज को कीजिए प्रमोट by requesting a song during this segment. So far, हमने आपको सुनवाया पश्तो गाना, उड़िया गाना, भोजपुरी गाना, और चूंकि बंगला गाने दो हो चुके हैं तो हम बंगला गानों की और रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग पेशेंटली। आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: माय नेम इज डेनी।
0: डेनी बोलिए, किस लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: मलयालम।
0: मलयालम सॉन्ग, याना जस्ट सेड दैट, आपने सुना होगा। ओके, बोलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सॉन्ग?
1: पालापल्ली तिरुपल्ली, पाला मूवी कडवा।
0: ओके, पालापल्ली तिरुपल्ली, क्या मतलब है इसका वर्ड का?
1: इट्स बेसिकली द फेस्टिवल इन पाला, a church, Pala church. So okay. It's a festive song.
0: Oh, nice. I like that. Well, thank you so much for calling and requesting that song. And where are you calling us from? Which town?
1: From Wiley.
0: Wiley. All right. Thank you. Here is your Malayalam song. Enjoy.

0: सुन रहे थे सुमन जी की रिक्वेस्ट पर हम ये पहला कनाडा सॉन्ग. सो फार वी हैव प्लेड कनाडा, सिंधी, मलयालम, भोजपुरी, उड़िया, बांग्ला के भी दो गाने हो गए, पश्तो का सॉन्ग भी हो गया. लेट्स सी अगला गाना कौन सी लैंग्वेज में होगा. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: शेरन नेल्सन.
0: हाय शेरन, हाउ आर यू?
1: Good. How
0: All right.
1: are you?
0: I'm doing good. Thank you for asking. And which language song did you want to request?
1: Hindi.
0: Okay, we're not doing Hindi, Urdu, or English. We're only doing South Asian regional languages songs. So is there a song that you want to hear which is in one of the regional languages spoken in the Indian subcontinent?
1: No, I just only wanted the Hindi one.
0: Oh, I am so sorry.
1: You know, that Kaptak Chubate.
0: Oh, I'm so sorry. So we can do that after 5 o'clock if you want to call back then. Because this,
1: okay.
0: Because this segment focuses strictly on the regional languages songs because they don't get played a lot. Thank you, sweetheart. Thank you for understanding. Let's go ahead and move on to our next caller. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
2: Jay.
0: I'm sorry?
2: Jay.
0: Jay, boliye, kaun si language ka gana request karenge?
2: Gujarati.
0: गुजराती. ऑल राइट, और क्या नाम है आपके गुजराती सॉन्ग का?
2: चरर चरर मारू चक्कर डोल चाले.
0: एक तो ये कि आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है. दूसरा आपके अब फिर से बोलिए. नो प्रॉब्लम, फिर से बोलिए.
2: चरर चरर मारू चक्कर डोल चाले.
0: हाय हाय, द साउंड्स लाइक अ फन सॉन्ग. चररा चररा चररा. ओके, चररा. ओके, एंड चक्कल चक्कडोल चले.
2: चक्कडोल मारू चक्कडोल चले.
0: ओके, ठीक है जी, ढूंढते हैं और प्ले करते हैं. और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
2: प्रॉस्पर
0: प्रॉस्पर
2: गोइंग टू द फ्रिस्को. या
0: गॉट इट, थैंक यू, एंजॉय, ड्राइव सेफली.

0: That was cha-ra-ra, cha-ra-ra, maro chakador. That was a fun song. Reminds me of all the time when all the garba and dandiya happens. Oh, speaking of upcoming festival, I hope you guys are ready for IANT's Anand Bazaar. Ji haan, 80th Indian Independence Day off the Indian Independence Day. And that's on Saturday, August 15th. It's starting in the afternoon at 2 p.m. And don't worry. I know you're thinking, oh my God, itni garmi mein kaun jayega? Well, it's an indoor event. That's right, Comerica Center Frisco mein. And it's free for everyone. So you can't miss all the great food stalls, the parade, cultural performances, live music, shopping. I mean, they got it all. So you need to be part of North Texas' biggest Indian Independence Day celebration on August 15th. So bring your family, bring your friends. पड़ोसियों को भी ले आए, जिसको भी लेके आना है, यू नो, शो देम ए कल्चर. ऑलराइट, दिस इज बोली प्यार की. लेट्स सी हमारे नेक्स्ट कॉलर को सुनना है कौन सा गाना. फनीशा रेडियो, यू ऑन द एयर. आपका नाम?
1: हाय, मेरा नाम हिमांशी है.
0: जी हिमांशी, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: राजस्थानी.
0: राजस्थानी, ऑल राइट. और क्या नाम है आपके गाने का?
1: पाई चली सासरी से है. छोटी सी उम्र परनाई.
0: छोटी सी उम्र में परनाई बाबोसा. ओके, ठीक है. आई विल प्ले दैट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
1: थैंक यू सो मच अमरीन जी. मैं किन्नी से.
0: ऑसम, थैंक यू.

0: And that was Anna Marina, a very popular Konkani language song. Jaldi se recap kar dun ke so far kaun kaun si languages ke gaane ho chuke hain. We played Rajasthani, Konkani, Gujarati, Kannada, Sindhi, Malayalam, Bhojpuri, Uriya, Pashto aur Bangla ke to humne do gaane play kar diye. So aur Bangla gaano ki request nahi le payenge. But any other language song you would like to request, you know the number, 972-235-5555. If we've only played one song of the language, you can request another one. Ya phir koi aisi language jiska gana abhi tak play nahi hua and that's your language, well, that is your responsibility. Aap call kijiye, bataiye kaun sa gana sunna hai. 972-235-5555 hai hamare studio ka number. Thank you for holding, Fanisha Radio par. Aap on air hai, bataiye aapka naam.
1: Hi, मेरा नाम वंदना है.
0: जी वंदना, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: पंजाबी सॉन्ग.
0: पंजाबी सॉन्ग, क्या नाम है आपके गाने का?
1: दिलजीत दोसांझ, लवर्स.
0: क्या नाम बताया गाने का?
1: लवर्स फ्रॉम दिलजीत दोसांझ.
0: नवश, इज दैट व्हाट यू
1: सेड? लवर, लवर.
0: ओ लवर, इंग्लिश का वर्ड.
1: हाँ.
0: पर गाना पंजाबी है, राइट? क्योंकि नाम इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी. ओके ठीक है. और आप वंदना हमें कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: सलीना से.
0: सलीना से. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ओके, ये रहा हमारा पहला पंजाबी सॉन्ग ऑफ द डे.

0: तेरा नी मैं लवर, दैट वाज दिलजीत दोसांझ, आवर फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग ऑफ द डे. वेल फोक्स, रक्षाबंधन जस्ट अराउंड द कॉर्नर. फनीशा रेडियो एंड शार्क टैंक कैसीनो एंड रिसॉर्ट एंड डुरान वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. सो गो अहेड, सेंड अस अ 1 minute वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 214-837-7147. And you could win exciting daily prizes, including dining experiences, entertainment, resort stays, and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Shark Tank Casino and Resort in Durand. You can get all the contest details by visiting Funisha's Facebook page. Now remember, that's Shark Tank Casino and Resort in Durand, where unforgettable memories are made together. And you've got to be 21 or older to participate. You can get the terms and conditions online. Now our whole time right now is 5 to 10 minutes. So याद रखिए, अगर आप इस segment में गाने की request के लिए call करते हैं तो हो सकता है कि 5 से 10 minute तक आपको hold करना पड़े. But I promise that I'm answering the calls in the order that I've received them. So if you disconnect and call back, it's going to take you back in the queue. So please be patient. Thoda sa dheeraj dhare. Sabar ka phal meetha hota hai. Stay on the line. I promise I'll answer your call. All right. Let's go ahead and move on to our next caller, Funisha Radio. Aap on air hai, aapka naam? Hello? फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं जी. आपका नाम?
1: माय नेम इज कृष्णा.
0: जी कृष्णा, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: आई नीड एन सॉन्ग ऑफ तमिल.
0: तमिल सॉन्ग, ओके. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर तमिल सॉन्ग?
1: इट्स ओरुवन ओरुवन मुदलाली.
0: ओके, ओरुवन ओरुवन, इज दैट व्हाट यू सेड?
1: Correct, yeah.
0: Orvan, Orvan. Okay, let's see if I can find it. Okay, I think I did. Purana gana hai, Rajnikant wala?
1: Yes, yeah.
0: Okay. Yeah, yeah. Aap Krishnan, where are you calling us from?
1: I'm from Irving.
0: All right, thank you for call. And here is your song.

0: விளையாடி உலகில் மற்றவன் தொழிலாடி விதியை நினைப்பவன் ஏமாடி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாடி.
1: All right, Sunrahithe, aap ye Tamil song. Hope you guys enjoyed it. 48 minutes past 4. Wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat playing regional language songs by request. Let's see agla gana kaun si zuban mein hai. Funisha Radio, aap on air hai. Aapka naam? Hello?
2: Mera naam Krishna hai.
1: Ji, Krishna, boliye. Kaun si language ka gana request karengi?
2: गुजराती में.
1: क्या नाम है गाने का?
2: जीव शर्मा.
1: ओके, फिर से
2: राजा रानी.
1: आपना क्या? आई एम सॉरी,
2: सॉन्ग इज अबाउट राजा रानी. आपना ज जीव शर्मा, आपनी ज भारता ने, आपने ज राजा ने रानी.
1: ओके, यू डू रियलाइज कि मेरी गुजराती बिल्कुल जीरो है, बट एनीवे थैंक यू फॉर ट्राइंग टू सिंग अलोंग. बट आई एम होपिंग दिस इज द राइट सॉन्ग. बाय द वे, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
2: इट्स बाय मानसी पारेख एंड पार्थ.
1: इट्स अ लव सॉन्ग, राइट? राजा ने रानी, इज दैट व्हाट इट्स कॉल्ड? राजा ने रानी, आपना जे जीवन. ओके, या नाम है. ओके, ठीक है, हियर इट इज.

0: राजा ने रानी सुन रहे थे आप ये गुजराती सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर है. आपका नाम?
1: माय नेम इज शेखर.
0: जी शेखर, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: इट्स तेलुगु सॉन्ग.
0: तेलुगु सॉन्ग, ओके. क्या नाम है आपके गाने का और जरा आस्था से बताइएगा, एज इन सेपरेट द वर्ड्स सो आई नो व्हाट यू आर सेइंग.
1: ओके, इट्स तेल्ला तेल्ला वारे वेलुगु रेखला.
0: तेल्ला तेल्ला वारे, ओके,
1: वेलुगु रेखला.
0: ओके, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट. ओके, आई थिंक आई गॉट इट. और आप कहां से कॉल कर रहे हैं हमको?
1: Princeton.
0: Okay, Princeton. Thank you for your call. Here's our first Telugu song of this segment. Looks like a wedding song.

0: And it seems like there was only a minute or something of this song. My apologies. I'm so sorry. Gaana foreign hi khatam ho gaya. Khair koi baat nahi. Next time pura play karenge. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Majid.
0: जी मजीद बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: गुजराती.
0: गुजराती के ऑलरेडी दो गाने हो चुके हैं. एनी अदर लैंग्वेज?
1: ओ फॉर सिंधी में है ना.
0: ओके.
1: लाल मेरी पत्ते रखियो भला, सिंधी
0: वो
1: में
0: है. मस्त कलंदर ऑलरेडी प्ले हो गया. इसके अलावा बताइए कोई और सिंधी का गाना हम अच्छा से प्ले कर दें.
1: हाँ कर दो.
0: ओके चलिए ठीक है, तो प्ले करते हैं हमारा सेकेंड सिंधी सॉन्ग. एंड अगेन फॉर दैट तेलुगु सॉन्ग, आई गेस वो वर्जन जो था वो शायद शॉर्ट वर्जन था, इसलिए गाना 1 मिनट और 18 सेकंड्स में खत्म हो गया. सो माय अपॉलॉजीज, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई फाइंड द फुल वर्जन ऑफ द सॉन्ग. फॉर नाउ लेट्स एंजॉय दिस सिंधी ट्रैक.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
12: बेटा, 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
16: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म।
15: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
17: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
18: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
19: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
20: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आर यू स्ट्रगलिंग विद योर क्वालिफिकेशन? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
13: चॉक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
14: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
22: खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Funasia Radio. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन हसनात. हमारा आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. राइट नाउ इट्स 5 minutes past 5 ऑन दिस 8th of August 2026. A smashing Saturday evening. I hope you guys are having a great time. Well, I'm always happy when I'm here. आप लोगों से बात करके, आपको entertain करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. और खासकर अच्छा लगता है जब मैं कोई winner announce करती हूँ. तो मैंने पूछा था सवाल कि जो हमारा पिछला segment था यानी कि बोली प्यार की, उसमें आज आपके ख्याल में कितनी अलग अलग languages के गाने play किए गए. तो करेक्ट जवाब हमें मिला परेश से. कॉन्ग्रेचुलेशंस परेश, यू वन योरसेल्फ ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, नाउ द होम ऑफ द बेस्ट देसी पिज्जास इन टाउन. आज हमने 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने आपको सुनवाए, जिनमें से 4 लैंग्वेजेस के 2-2 गाने प्ले किए गए. सो टुडेज लैंग्वेजेस वर पश्तो, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मलयालम, सिंधी, कन्नडा, गुजराती, कोंकणी, राजस्थानी, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु. है ना कितने मजे की बात. हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं, पर सबकी सब होती हैं बोली प्यार की. अगली बार जरूर ट्यून इन कीजिएगा टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग ऑफ योर लैंग्वेज. अब आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट.

आप सोच रहे होंगे कि ये जो गाना मैंने प्ले किया, इट इज सच एन ओल्ड सॉन्ग, राइट? है तो मशहूर, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या होने वाला है आज का सेगमेंट? जी हाँ, ये गाना 1973 में रिलीज हुई फिल्म यादों की बारात से लिया गया था और आवाज थी लता मंगेशकर की। ये गाना हमारे सेगमेंट का पहला गाना इसलिए है बिकॉज आज हम अपना खान स्पेशल कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार चुना है हमने एक और खान को जिन्होंने इस फिल्म से अपने करियर की थी शुरुआत। जैसे ही आप अगला गाना सुनेंगे समझ जाएंगे मैं किस खान की बात कर रही हूँ। दिस खान स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा हु कैन हेल्प यू आउट इफ यू इन एनी टाइप ऑफ एन इंजरी एक्सीडेंट। यू डोंट हैव टू पे टिल यू विन, सो डोंट वरी अबाउट द फीस। प्लस उनकी कंसल्टेशन भी फ्री होती है एंड दे मेक श्योर दैट द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स यू द कंपनसेशन यू डिजर्व। 4693005046 है उनका नंबर और यू कैन ऑलवेज विजिट attorneyomar.com। लेट्स एंजॉय द खान स्पेशल।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और आमिर खान ने अपने पापा का कहा पूरा किया और बहुत बड़ा नाम किया। कयामत से कयामत तक फिल्म से लिया गया ये गाना हमने आपको खास खान स्पेशल में सुना है, जिसमें आज हम फीचर कर रहे हैं आमिर खान के फिल्मी गीत।

हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दिल फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया था। आवाज थी यहाँ उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की। ये गाना फिल्म 1990 में रिलीज हुआ था। आज खान स्पेशल में चूज किया है हमने आमिर खान को, सो बैक टू बैक आमिर खान के फिल्मी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। ऑफकोर्स हिट गाने, कोशिश मेरी यही होगी कि ऐसे गाने सुनवाऊं जो मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। नाउ दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स। नाउ एवरीवन नोज ज्वेलरी इज जस्ट मोर देन एन एक्सेसरी बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। और अगर आप पिकी हैं और यू थिंक यू वॉन्ट एवरीथिंग दैट्स टॉप ऑफ द लाइन, यू विल फाइंड इट एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स फॉर श्योर। क्लासिक गोल्ड डिजाइन, स्पार्कलिंग डायमंड्स, इंट्रिकेट कुंदन ज्वेलरी, मतलब उनकी कलेक्शन लाजवाब है। पर मेरे कहने से क्या होता है, आप खुद उनके शोरूम पर जाइए विच इज ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ व्हाई श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज नोन फॉर देयर ब्यूटिफुल क्रिएशंस। ऑलराइट, सो बैक टू खान स्पेशल। आमिर खान के बारे में क्या आप जानते हैं? वैसे तो ये सब जानते हैं कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, पर अपने बचपन में वो स्टेट लेवल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं और ही स्टॉप्ड एंड देयर अदर थिंग्स आई एम गोना टेल यू, बट फॉर राइट नाउ हियर समथिंग यू मे नॉट हैव नोन दैट ही वाज अ स्टेट लेवल टेनिस चैंपियन। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू खान स्पेशल और लेकर चलते हैं अगले गाने की तरफ आपको।

दिल है के मानता नहीं कि ये गाना हम बीच में रोक दें, इतना अच्छा है। लेकिन क्या करें, आमिर खान की इतनी सारी हिट फिल्में हैं, इतने गाने हैं, हमें सबके साथ जस्टिस करना है। इस गाने से पहले हमने आपको सुनवाया कयामत से कयामत तक का गाना, विच केम आउट इन 1988। इनफैक्ट नहीं, दिल गाना, जो दिल फिल्म का गाना, विच वॉज 1990, एंड दिस वन फ्रॉम जो जीता वही सिकंदर वॉज रिलीज्ड इन 1992। उसके बाद नो, दैट्स द सॉन्ग दैट वी आर अबाउट टू प्ले, सो हियर वी गो, एंजॉय।

पहला नशा पहला खुमार सुन रहे हैं आप खान स्पेशल, जिसमें आज हम फीचर कर रहे हैं आमिर खान के फिल्मी गीत। ये तो सभी जानते हैं कि वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, पर वो स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं। इनफैक्ट एक्टिंग करने से पहले वो कंपेटिटिव टेनिस खेला करते थे और उन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, वो जब यादों की बारात में उनको पार्ट मिला था ना, ही वॉज लाइक अराउंड 3 or 4 years old एंड ही एक्चुअली गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट मूवी शूट बिकॉज उन्होंने कैमरे के सामने ना रोना शुरू कर दिया था। तो उनके अंकल जो थे ना, उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया उनके छोटे भाई के साथ। बट यू नो, आई थिंक एटलीस्ट द सॉन्ग वॉज शॉर्ट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: जीनी, मेरी आखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम आखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
11: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
13: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval. Policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
14: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad and 75-inch, 65-inch and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
13: First five customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
14: India Bazaar, the people's store.
13: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
15: खैर, मकदम करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, bringing the community together. I hope you guys are doing well, enjoying this Saturday evening. It is 34 minutes past 5 and we're doing the Khan special. Now, we had one of our young callers from our earlier segment who wanted to hear this one song from a Shah Rukh Khan movie. Now, I know today we're only doing Aamir Khan, lekin because I had promised her, aur main bhi Salman Khan ki behen hi hoon, jab ek baar commitment kar leti hoon, to khud ki bhi nahi sunti. So, because I had given her my word, I am kind of interrupting our regular segment to play her request. Sharon, I hope you're still listening.

कुछ तो All right, taken from the film Dil To Pagal Hai. That was a special request that we interrupted our regular segment to play because we had made a commitment, as in I had made a commitment. It is 38 minutes past 5. You're listening to The Khan Special, जिसमें आज हम आपको आमिर खान की हिट फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं. एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब वो 16 ईयर ओल्ड थे, तब उन्होंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट साइलेंट फिल्म बनाई थी. इट वॉज एक्चुअली अ 40-मिनट साइलेंट एक्सपेरिमेंटल फिल्म और उसका नाम था पैरानोया. हमारी एक और कॉलर की सजेस्टन पर आमिर खान की फिल्म लव लव लव से लिया गया. सुनते हैं ये गाना.

परदेसी फिल्म से लिया गया ये गाना उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप. एंड दिस वाज वन ऑफ मेनी सुपर हिट आमिर खान मूवीज. आज खान स्पेशल में हम फोकस कर रहे हैं आमिर खान पर. एंड आई स्पेशली सिलेक्टेड दिस नेक्स्ट सॉन्ग क्योंकि उसमें गाने में उन्हीं की है आवाज़.

0: सब निकलते और क्या।
1: क्या बोलती तू, क्या बोलती तू, सच अ स्वीट एंड सच अ फन सॉन्ग। आई होप यू गाइस एंजॉयड लिसनिंग टू इट एज मच एज आई एंजॉयड प्लेइंग इट। विधांत, आई नो यू सजेस्टेड अ सॉन्ग फॉर आवर सेगमेंट एंड आई प्रॉमिस आई विल प्ले इट फॉर यू बिफोर वी एंड एट 6 PM। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि जब आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज होने वाली थी, बच्चा वो बहुत टाइट बजट पे थी, तो आमिर और उनके एक को स्टार राज जुच्ची एक्चुअली यू नो दे वुड राइड अलोंग इन लोकल बसेस एंड ऑटोज ताकि वो जो मूवी के पोस्टर्स हैं वो जगह जगह लगा सके। सो दैट्स व्हाट ही डिड एंड दैट्स हाउ हार्ड ही वर्क्ड जस्ट टू प्रमोट कयामत से कयामत तक, जो ऐसी सुपर डुपर हिट हुई कि क्या कहने।

मन फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप, जो आमिर खान और मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। ऑलराइट, टाइम फॉर अस टू रैप अप द सेगमेंट। सो विधांत की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं लगान फिल्म का ये गाना। आई होप कि आज आप लोगों ने हमारे सेगमेंट को एंजॉय किया, विच वॉज ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय टेक्सस प्राइमरी केयर, जो लेकर आए हैं आपके लिए लिनॉक्सी मेडिकल, अ क्लिनिक विच इज ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, ऑफरिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, एवरीथिंग फ्रॉम अर्जेंट केयर, प्राइमरी केयर, लैब्स, टेस्टिंग, एक्सरे, हिमालयन मेड स्पा एंड सो मच मोर, ऑल दैट एट टेक्सस प्राइमरी केयर। ऑलराइट फोक्स, इस आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत, आपसे होगी कल मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम, यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 FM बिटवीन 3 and 6 PM। दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से।

A very good evening to Dallas and to all my desi people hearing me out. मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेचर रेडियो 104.9 FM. मेरा और आपका साथ रहने वाला है पूरे के पूरे 3 घंटे यानी कि 9 बजे तक. तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, चाहे वो घर की कुर्सी हो या फिर आपके कार की कुर्सी हो. तो क्योंकि मैं तो बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ना वीकेंड का 3 ही मतलब है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. और इस

चाहे वो घर की कुर्सी हो या फिर आपके कार की कुर्सी हो। तो क्योंकि मैं तो बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ना वीकेंड का तीन ही मतलब है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और इसके पहले कि मैं एंटरटेनमेंट शुरू करूँ और आपसे एक मिलियन डॉलर सवाल पूछूँ, मैं चाहती हूँ कि पहले आप कुछ गाने तो एंजॉय कर लीजिए।

0: आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे सिम्मी को ऑन फनेशर रेडियो 104.9 एफएम। और कुछ सॉन्ग्स बजाने के पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मिलियन डॉलर का सवाल लेके आई हूँ, तो पूछ ही लेती हूँ, इतना बड़ा सवाल ले आई हूँ तो सवाल ही वैसा है। सवाल ये है कि अगर आपको 1 मिलियन डॉलर्स मिल जाए लीगली, नॉट लाइक किसी और का आपके अकाउंट में आ गया, अगर आपको लीगली 1 मिलियन डॉलर्स मिल जाते हैं तो आप उसका क्या करेंगे? मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये सोचो कि आप डबल चेक करेंगे कि सही है ना, लाइक नंबर सही है, काउंट करेंगे जीरोज, या फिर बैंक को कॉल करेंगे, डबल चेक करेंगे अगेन, या फिर अपने स्पाउस को या अपने फैमिली मेंबर्स को दे देंगे, या फिर घर का, ट्रैवल, फैमिली, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, क्या प्लान होगा आपको? लेट मी नो बाई कॉलिंग मी एट 972-235-5555।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज

0: भाई ख्वाहिश नहीं बाकी रहनी चाहिए, स्पेशली जब अगर आपको ना $1 million आपके हाथ में मिल जाए लीगल तरीके से, समझ लो कि लॉटरी लग गई बस, तब तो ख्वाहिशें पूरी होनी ही चाहिए। और यही सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको $1 million मिल जाता है तो आप उसका क्या करेंगे। हमें बहुत सारे कॉल्स आए और सबसे इंटरेस्टिंग कॉल आया यास्मिन जी का, और उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले गरीबों को देंगी, फिर वो बच्चों में कुछ दे देंगी, कुछ शेयर, और अपने लिए लास्ट में एक मकान बनाएंगी। आई मीन सो क्यूट कि सबसे पहले ना उन्होंने ऐसा सोशल वर्कर सोचा और दूसरों के बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, फिर अपने बारे में सोचा, अपने यानी अपने ड्रीम होम के बारे में सोचा। और एक और मेरे लिए आपके लिए मतलब मेरे पास न्यूज़ है कि अगर आपका भी ऐसा ही कोई सपना है कि आपका एक ड्रीम होम हो तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज। और ये ना 1998 से बहुत सारी फैमिलीज की मदद करते आए हैं, उनके होम ओनरशिप के सपने को रियलिटी में बदला है उन्होंने। इनका पूरा जो प्रोसेस होता है वो स्मूथ होता है और स्ट्रेस फ्री होता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके पास सारे 50 स्टेट्स के लाइसेंस भी अवेलेबल है और 1998 से हैं भाई, तो एक्सपीरियंस तो है ही है, तो आपके लिए ना राइट लोन ऑप्शन में भी मदद कर सकते हैं आपको अगर आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। और या अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं या फिर रीफिनेंस करने का सोच रहे हैं, ड्रीम होम मॉर्गेज आपकी हर चीजों में हर तरीके से मदद कर देंगे। अगर आप उन्हें कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं बता रही हूँ, इट्स 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com।
1: Porque lo sé, everybody come on, let's do baila tres, dos, uno, everybody.

0: मिलते हैं ब्रेक के बाद. दिस इज आरजे सिमी एंड यू आर लिसनिंग टू.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, एआई एंड लेट स्टेज प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
7: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
8: Visit Fan Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
9: अजी सुनते हो?
10: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
11: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
13: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fikar not. We have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 AM to 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack. Exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी और मेरा और आपका साथ अभी लंबा चलने वाला है पूरे 9 बजे तक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको $1 million मिल जाए तो आप क्या करेंगे। काफी सारे कॉल्स हमारे पास आए हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी लोगों के कॉल्स आए, लेकिन मैं बता दूँ कि अगर आप एक कॉरपोरेट मजदूर से पूछोगे कि भाई अगर आपको $1 million मिल गया तो आप क्या कहेंगे, तो वो तो भाई खुश हो जाएगा। उसका जवाब ये होगा कि मतलब उसके दिमाग में ऐसा पूरा सिनेरियो चलने लगेगा कि मंडे मॉर्निंग हो, बॉस बोले गुड मॉर्निंग और आप कहे गुड बाय, और बॉस ने पूछा व्हाई, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज आई बिकम रिच ओवरनाइट। तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे अगर आपको $1 million मिल जाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कॉल मी एट 972-235-5555।

बहुत सारे लोगों का कॉल आया है मुझे यानी कि आरजे सिमी को, और मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई अगर आपको $1 million मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे, और साइदा जी ने बताया कि वो सबसे पहले तो एक बंगला बनाएंगी, मस्त एक कार लेंगी, और फिर जो उनका बचेगा बाकी सबको उनको बैंक में रख देंगी एज अ सेविंग्स, और लोगों की मदद करती रहेंगी, मतलब जो जो जरूरतमंद लोग आएंगे उनसे हेल्प मांगने के लिए वो सबकी मदद करेंगी। वेरी वेरी स्वीट। और इंद्र जी का भी फोन आया, उन्होंने भी सबसे पहले जो ये कहा कि 10वां हिस्सा ना भगवान के लिए छोड़ देंगे, भगवान को दे देंगे, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठेंगे कि हाँ भैया अब बताओ कि ये पैसे से पैसे कैसे बनाना है, मतलब जो वेल्थ मैनेजमेंट होता है और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जिन लोगों को आता है आई मीन वेल टू डू गाइज, मतलब काफ़ी अच्छी स्किल है और सीखनी चाहिए सबको, क्योंकि यू नो यू कैन नॉट बी वर्किंग हमेशा हमेशा के लिए, इट्स वेरी टायरिंग अंटिल अनलेस आपको पसंद हो। और जो है उन्होंने बताया, काफ़ी इंटरेस्टेड लगे मुझे ये फाइनेंशियल प्लानिंग में, उनसे बातें करके भी अच्छी लगी कि वो अपने बच्चों को भी अभी से, मतलब आई थिंक 16 or 19 years में उन्होंने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस, और वो भी अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हु आर यू, क्या आप टीम योलो हैं यानी कि यू ओनली लिव वंस तो भाई फटाफट एकदम एंजॉय कर लो जब तक एनर्जी है, जब तक लाइफ है, या फिर आप टीम SIP है कि यू नो इन्वेस्ट करते रहो क्योंकि इसके रिटर्न्स अच्छे आएंगे और अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं। लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एजर रेडियो 104.9 FM। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज हमने पूछा है कि अगर आपको $1 million मिल जाए तो आप क्या करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब भी हमें मिला है। समायरा जी ने कॉल किया था हमें और उन्होंने बताया कि देखो भाई, अगर पैसे मिल गए तो मैं तो चली वर्ल्ड टूर पे। ट्रैवल करने उनको काफी पसंद है और उन्होंने कहा कि अगर अभी हम इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न का वेट करेंगे, अभी वो 40s में है उन्होंने कहा, तो फिर रिटर्न में तो वॉकर आ जाएगी जब तक कि रिटर्न्स वगैरह आए, जब तक कि हम चिल करने लगे। तो उनका तो ये प्लान है वर्ल्ड टूर का। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे भी पूछा कि मैं इतनी सारी बातें कर रही हूं कि हाँ $1 million आ जाए तो क्या करेंगे, सुहाने सपने, लेकिन आएंगे कैसे भाई, पैसे बनेंगे कैसे, वेल्थ मैनेजमेंट होगी कैसे। तो मैं जवाब दे देती हूं कि आप एजी फिनटैक्स की मदद जरूर लें। वो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US और वो आपको ना ये सारी इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज बता देंगे जिससे कि आपका वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर हो। और अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, वेल स्टैब्लिश है, ये हर तरीके के बिजनेस में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअली भी ये काफी ट्रस्टेड हैं, इफिशियंट हैं और आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हैं। आपको उनको कॉल करना है एट 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विच इज agfintechs.com।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hello, Texas Parivar. Kya aapko pata hai? There is a first-time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189. क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट. ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
14: First five customers shopping for $150 gets a free 10 gram silver coin.
13: India Bazaar, the people's store.
15: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
16: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर